नमस्कार, FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 18 तारीख, तदनुसार 10 अक्टूबर 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के के निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से

0: फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये एक अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु, विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा, हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संगीत सरिता में सुबह 6:45 पर सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं का भाग 10वां। आमंत्रित कलाकार हैं संगीतकार शेखर सेन। पुराने फिल्मी गीत सुने भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिए सुबह पहले सुबह 8:15 पर और फिर दोपहर 2:00।

नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक होगा पहले सुबह 8:30 पर और फिर रात 8:15 पर। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आज का अखबार पेश किया जाएगा सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम सफर सुरीला सा आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। कार्यक्रम पॉप टाइम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:30 पर। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:05 पर। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। दिन में 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम मन चाहे गीत का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3:00।

3:30 पर कार्यक्रम नाट्य तरंग में सुनिए नाटिका प्लास्टिक की घास का पहला भाग। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।

प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग में सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के विजेता श्री रवि जायसवाल,

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गीत। कार्यक्रम विशेष जयमाला सुनिए शाम 7 बजे। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम संगीतकार उषा खन्ना पर आधारित रहेगा।

हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का दूसरा भाग। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेत्री रेखा पर केंद्रित रहेगा। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत और सुरसांझ कार्यक्रम रात 10:32 पर। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

हैंडसेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग डीटीएच वेव्स एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस का अनुवाद। सुनिए भाग 337।

वानर और आसुरी सेनाओं के युद्ध का अंत होता नहीं दिखता। सारा प्रांतर शवों से पट गया है। रक्त और मज्जा की जैसे नदियां बह चली हैं। इनमें भूत पिशाच स्नान कर रहे हैं। चील और कौवे कटे अंग लेकर उड़ते और आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। अजीब विभत्स दृश्य उपस्थित है। लेकिन रावण अपनी सेना का उत्तरोत्तर संगार होता देख माया रचने की सोचता है। इधर श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ भेज देते हैं। श्री राम जब रथारूढ़ होते हैं तो वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उधर रावण ने अपना माया जाल फैलाया। स्वयं राम को छोड़कर वानर भालू सेना को जगह जगह कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। ये दृश्य देख लक्ष्मण भी मूरत की तरह ठगे से खड़े रह गए। किंतु श्री राम से इस दृश्य का भेद और अपनी सेना का असमंजस छिपा न रहा। वे बोले, हे वीरों, युद्ध करते करते तुम लोग थक गए हो, अतः तुम्हें विश्राम चाहिए। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। शेखर सेन जैसे महान गायक, साधक, संगीतकार हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, और सभी श्रोता वृंद को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। और आज मैं चाह रहा हूं एक अद्भुत रचना के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करना।
1: जी,
2: ये कालखंड था 1961 का।
1: जी,
2: और उस समय भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि हमने चीन से अपना युद्ध हारा था। और मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई अतीव दुख हो, बहुत अधिक दुख जिसका कोई उपचार न हो,
1: जी जी,
2: तो उसमें कहीं पर कोई संगीत, कोई गीत, कोई प्रार्थना ही एक फाहे की तरह उसको धीरे से सहलाती है, ताकि हम अपना दर्द भूल सकें।
1: बिल्कुल, औषधि का काम करती है।
2: बिल्कुल। और इसी समय जो फिल्म एक आई थी, उस फिल्म का एक गीत आपको सुना रहा हूं, जिसमें बहुत ही विद्वान गुणी संगीतकार जयदेव जी ने संगीत दिया था।
1: जी जी।
2: और गाया था लता मंगेशकर जी ने। आप जब ये रचना सुनेंगे तो आप स्वयं साथ में गाने लगेंगे, लेकिन इस रचना को सुनाने के पहले मेरा एक आग्रह है।
1: जी जी।
2: आप में से जो संगीत के विद्यार्थी हैं, वो उसको इस दृष्टि से

0: सुने कि ये शायद उन बहुत ही बिरले गानों में से है जहां स्थाई और अंतरे की धुन एक ही है
1: जी,
0: लेकिन सा बदल गया है। स्थाई जो है वो सा से है और वही धुन वही नोटेशन अगर आप म से गाएं तो वो अंतरा बन जाता है।
1: जी जी,
0: तो मैं आपको पहले गा के सुनाता हूँ तो आपको रचना याद आ जाएगी।
1: जी।

0: अब मैं स्थाई में अंतरा गा सकता हूँ, अंतरे की धुन में स्थाई गा सकता हूँ,
1: क्या बात,
0: क्योंकि नोटेशन वही है, केवल सा से अगर वो नोटेशन गाया जाए तो स्थाई है, मध्यम से गाया जाए तो अंतरा है।
1: जी।
0: और ऐसी रचना के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे आदरणीय जयदेव जी के उस महान प्रतिभावान संगीतकार की प्रतिभा को नमन करें, और लता जी ने इसको जिस ढंग से गाया है
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: तो खैर अद्वितीय है, अतुलनीय है
1: जी।
0: मैं चाहूंगा श्रोता आनंद लें, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो।

0: हम दोनों फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में हमारे श्रोता सुन रहे थे। शेखर दादा, अब इस गाने के बाद आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाएंगे?
1: मैं अभी तक तो आपको शब्द सुना रहा था, स्वर सुना रहा था
0: जी।
1: लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शब्द सुनाऊं।
0: जी जी जी, क्या?
1: और 600 वर्ष पहले सिख पंथ के जो प्रवर्तक थे आदरणीय गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक विलक्षण परंपरा को जन्म दिया था। उस कालखंड में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संगीत के माध्यम से उपासना की पद्धति शुरू की, जो हमारे यहाँ हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पूर्व में देखें तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन गा रहे थे और गवा रहे थे। पर पंजाब में गुरु नानक देव जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की। और उन्होंने इसको कहा कि केवल मेरे या मेरे शिष्यों के या मेरी परंपरा को मानने वाले ही नहीं
0: जी जी,
1: बल्कि अन्य संतों की रचनाओं को भी हम संकलित करें
0: जी।
1: और एक गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ग्रंथ साहब, वही प्रकाश स्तंभ की तरह सिख संप्रदाय को दिशा निर्देश देता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत परंपरा उन्होंने चालू की। और अगर आप कभी देखने का आपको अवसर मिले गुरु ग्रंथ साहब, तो हर एक शब्द के ऊपर
0: जी
1: उसके राग का नाम लिखा हुआ है, किस राग में उसको गाना है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी।
1: तो ये एक बड़ी अद्भुत परंपरा कि संगीत के साथ, प्रार्थना के साथ और आध्यात्मिक शब्दावली के साथ उन्होंने जोड़ा। और उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो शब्द है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है
0: जी। क्या बात।
1: तो उसके बाद जो खालसा पंथ की शुरुआत होती है वो उसके काफी दिनों बाद, वो 1699 में जो 10वें गुरु थे
0: जी जी,
1: गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने फिर खालसा पंथ की स्थापना की। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने ही स्वर में सुना रहा हूं। वैसे तो आपको मिल जाएंगे गुरु ग्रंथ साहब से या शब्द बहुत अच्छे अच्छे गायक हमारे देश में हैं, पर मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि गुरु नानक देव जी की बानी गाने का मुझे अवसर
0: मिले। और हम नहीं लोभ संवरण कर पा रहे हैं कि हम बार बार आपसे अनुरोध करते रहे, तो जरूर गाएं दादा।
1: ये मेरी माँ की स्वर रचना है।
0: अच्छा।
1: शब्द गुरु नानक देव जी के
0: जी, अनीता सेन जी
1: जी,
0: जी।

0: क्या बात है, अद्भुत रचना आपने सुनाई और अद्भुत स्वर में आपने समा बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमें लगता है कि इस कड़ी को यहीं पर समेटना होगा। श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन, तबला संगत आशीष सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी।

0: आशीष सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके?
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
7: थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
8: पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
9: कुछ लिखा,
8: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
10: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।
11: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

ये सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। और आज सबसे पहले हम इस गाने से शुरुआत कर रहे हैं, तब तक आप सोचिए क्या आखिर क्या वजह हो सकती है, आज ऐसा क्या खास दिन है।

मजो सुल्तानपुरी के बोल थे वसंत देसाई की तर्ज अर्धांगिनी फिल्म का ये गाना था। आपको बता दें कि हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हर साल भारत में मनाया जाता है नेशनल पोस्ट वीक यानी राष्ट्रीय डाक सप्ताह। हर दिन एक अलग अलग आयोजन होता है, उसमें से एक आयोजन फिलेटली या डाक टिकट जमा करने पर भी होता है। चिट्ठियां बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं हमारी जिंदगी का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर

0: फागुन फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलाल आबादी के बोल थे, संगीत ओपी ने यर कथा। अब हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम और शीतलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।
1: बात करना चाहता हूँ।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: मोसी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में था। भरत व्यास की बोलते संगीत वसंत देसाई का और ये थी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। वीको।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए वीको टर्मरिक क्रीम मैंने चुनी खूबसूरती
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हम ही रही प्यार के

साहिर उद्यान जी के बोल थे एस डी बर्मन की तर्ज प्यासा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आज है गुरुदत्त की याद का दिन और आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर उन्हीं पर केंद्रित होगा।

संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: इसी के साथ अब आज का हमें रही प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है, FM 107.2 MHz पर 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इसी के साथ अब आज का हमें रही प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले

0: और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
2: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं, प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
1: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ सात मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में

0: विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
2: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
1: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
3: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
1: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
4: बिरसा मुंडा गांव-गांव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना धन और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम करकट्टा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी
5: 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

0: हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवि पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।

0: खातिया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गो, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से

चिट्ठी खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिया के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं नहीं।

0: नमस्कार।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
5: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
6: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
5: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
6: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
5: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
6: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
7: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
8: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
7: ऐ ता फिर यार मार वाली गल होगी।
8: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
9: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
10: अब आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक।

आइए सुने चित्रलोक। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक साथ बहुत सारे विशेष दिन आज, गुरुदत्त की याद का दिन, रेखा का जन्मदिन, राष्ट्रीय डाक दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस।

तनवीर गाजी की बोलते मनाली ठाकुर की आवाज। अक्टूबर फिल्म का ये गाना आपने सुना आज 10 अक्टूबर। अक्टूबर फिल्म का गाना अक्टूबर में। शांतनु मोहित्रा का संगीत था जिन्हें हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और अब A.R. रहमान की आवाज गूंज रही है विविध भारती पर सुबह की 8:35। 10 अक्टूबर की सुबह।

AR रहमान और साथियों की आवाजें थी। फिल्म का नाम दिल से। विविध भारती पर चित्र लोग यूनुस खान के फन, गुलजार के बोल, रब्बी शेरगिल की आवाज, जब तक है जान।

कुछ ही रहना और रेखा भरद्वाज की आवाजें थीं। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन, भानु रेखा गणेशन। 10 अक्टूबर 1954 को रेखा का जन्म हुआ था और रेखा की जो फिल्मी यात्रा है वो बहुत ही शानदार रही है। एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने की हैं और हम आपको उस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं रेखा को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए, जिसने रेखा को शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके अभिनय का लोहा सारी दुनिया ने माना। मुजफ्फर अली की फिल्म उम्र अफजान।

0: शहरयार के बोल थे खयाम की तर्ज उमराव जान फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आशा जी को मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गायिका का और इस फिल्म के लिए रेखा को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह, वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ऐ तो फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं.
3: अभी तो हम बहुत अच्छे

0: एमरजेंसी में है। जो मृत्यु दर होता है मॉर्टेलिटी है वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में।
0: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: फैसल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव की भूल थी, प्रीतम की दर्ज थी, पेपॉन की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेट्रो। इन दिनों इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आज का अखबार।
0: नमस्कार, आज का अखबार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चैतन्य। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो हम चार्जर ढूंढने लगते हैं, है ना? लेकिन जब हमारा अपना मूड डाउन होता है, मन उदास होता है या दिमाग में एक साथ 100 बातें चल रही होती हैं, तो क्या हम खुद को थोड़ा आराम देते हैं या फिर कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा? बस दोस्तों, यही छोटी सी बात हमें आज के विषय तक ले आती है और वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस तरह शरीर की सेहत ज़रूरी है, उसी तरह मन की सेहत भी ज़रूरी है। और इसके लिए हर वक्त गंभीर बने रहना या ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपने पसंदीदा गाने सुन लीजिए, कभी किसी दोस्त से दिल खोल कर बातें कर लीजिए, कभी चाय की प्याली के साथ थोड़ी देर खुद को दीजिए। और हाँ, हर वक्त सबको खुश रखने की जिम्मेदारी भी अपने सिर मत लीजिए, आप कोई 24 घंटे चलने वाली मशीन थोड़ी ही हैं। और अगर कभी मन बहुत परेशान रहे तो किसी भरोसेमंद इंसान या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, दूसरों का ख्याल रखेंगे लेकिन अपना ख्याल रखना भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में मन का खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी का चलते रहना। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो मेरे सभी श्रोताओं को डाक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है मुख्य नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स हेडलाइंस की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा।

भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमेरिकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को

वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराया और 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। कार्यक्रम में अब बात करते हैं जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में। जेम्स ऑफ इंडिया, अपने जिले की कहानी अपनी जुबानी, देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं इस चैलेंज में कैसे रजिस्टर करें। MyWaves OTT ऐप पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट कर दें। और खास बात, चंडीगढ़ भी इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल है। और ध्यान दीजिए, एंट्रीज अब 31 अक्टूबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी, तो देर मत कीजिए। अपने शहर, गांव या जिले को किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी विभागों को एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। टीबी मुक्त भारत अभियान के

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बल्लभगढ़ पलवल मेट्रो विस्तार परियोजना की अंतिम व्यवहारिता रिपोर्ट को मंजूरी दी।

हिमाचल प्रदेश सरकार के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में इस बार कम हुआ सेब सीजन। अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां पहुंची बाजार तक।

विश्व डाक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन 15 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम।

चंडीगढ़ के 111 वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष 2% में, स्टैनफोर्ड एल्सवियर की 2026 सूची में पीजीआई के 55 और पंजाब यूनिवर्सिटी के 56 शोधकर्ताओं को जगह।

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला पहला वाइस चांसलर, NITTR डायरेक्टर भोला राम गुज्जर को मिला एडिशनल चार्ज।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने फेस्टिव सीजन में अपनी 91 प्रॉपर्टीज की ई ऑक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। फेस्टिव सीजन में घर दुकान खरीदने का मिला सुनहरा मौका।

0: इसी गीत के साथ आज का अखबार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अपने होस्ट और दोस्त चैतन्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने कुछ 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

0: 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
1: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हुर्मुज जलडमरु मध्य पर अमरीका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को सम्मानित किया। इस बीच इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इजराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाई होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीलासा। नमस्कार, कार्यक्रम सफर सुरीलासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चैतन्य। आइए शुरू करते हैं मेलोडियस गीतों का ये सफर, जहां संगीत की हर एक धुन आपके दिल को छू जाएगी। लीजिए पेश है फिल्म चोरी चोरी का ये गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दिल देके देखो से ये गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

0: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। पेश है मुकेश की आवाज में ये सदाबहार गीत। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म है अनाड़ी।

0: कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा अंतराल।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। प्रस्तुत है फिल्म जवानी दीवानी से ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है RD बर्मन ने और आवाज है किशोर कुमार की।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: कार्यक्रम सफर सुरीला सा के अंत में सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म यादों की बारात का ये गीत। संगीतकार हैं RD बर्मन और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सफर सुरीला सा यहीं समाप्त होता है. अपने दोस्त और होस्ट चैतन्य को दीजिए इजाजत. नमस्कार. आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर. आइए सुनते हैं कार्यक्रम पॉप टाइम.
1: पॉप टाइम. पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार.
2: हेलो मेरे सोने गुगू मुगू पाजी.
1: हेलो पिंके, हो गए शुरू मुझे देखते ही.
2: आए पाजी, मैं कौन सी तगड़ी मार हूँ और आप कौन सा स्नैचर हैं जो मैं शुरू हो गया आपको देखते ही टी टी करके.
1: ओहो पिंके, सुधर जाओ.
2: पाजी आप ही मुझे ही सुधारते रहियो. उनको कुछ ना कहियो जो भोले भाले बुजुर्गों की चैने खो, पर्स खो, मोबाइल खो के स्नैच के भाग जाते हैं टीडी टी करके.
1: हाँ पिंके, खास तौर पर सुबह शाम जब बुजुर्ग सैर करने निकलते हैं तो ये स्नैचर उन पर अटैक कर देते हैं.
2: तभी तो कहता हूँ अंकल जी आंटी जी, आप जरा ध्यान से देख के सैर किया करो, आजकल जमाना बड़ा खराब है. हाँ, अगर किसी स्नैचर को देखे ना तो फटाफट रोड़ा पा दो, शोर मचा दो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो. वैसे एक बात कहूँ अंकल जी आंटी जी, सोने के गहने और पर्स घर ही छोड़कर सैर किया करो. हाँ, दिखावे की क्या जरूरत है टीडी टी करके.
1: बिल्कुल पिंके, वैसे इन स्नैचर्स को शर्म नहीं आती.
2: पाजी शर्म नहीं, ये तो बड़े बेशर्म होते हैं वे लड़के ही के, काम के ना काज के, दुश्मन समाज के टीडी टी करके. ओए होए स्नैचरो, सुधर जाओ. क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पे तुले हो, मेहनत करो. मेहनत की कमाई में जो बरकत होती है वो और कहां टीडी टी करके.
1: बिल्कुल सही कहा पिंके,
2: मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ, आप ही गलत समझते हो मेरे कॉन्फ्यूज पाजी टीडी टी करके.

0: पिंके आज शन्नो जी कहाँ हैं?
1: पाजी शन्नो जी घर बैठी फिल्म देख रही हैं, घर जवाई।
0: घर जमाई?
1: हाँ जी पाजी, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, टीडी टी करके।
0: पर पिंके मैं घर जमाई नहीं हूँ।
1: तो और क्या, ससुराल में दही जमाने वाले दही जमाई हैं, टीडी टी करके।
0: ओहो पिंके, हर बात घुमा फिरा कर तुम मेरे ऊपर क्यों छोड़ देते हो?
1: आए पाजी, आप कौन सी चंडीगढ़ की डड्डू माजरा कॉलोनी है जो हर बात घुमा फिरा कर मैं आप पर छोड़ दूंगा, टीरी टी करके।
0: ओहो पिंके, तुम भी बात का बतंगड़ बना देते हो।
1: और क्या, मैं बैंगन का पड़था बनाऊं आपके घर से ताजे ताजे बैंगन तोड़ के।

0: सच मेरे बैंगन भाजी।
1: क्या कहा पिंके?
0: अब मेरा मतलब है मेरे बैंगन जैसे चमकदार सोने पाजी।
1: पिंके ये क्या कह रहे हो?
0: पाजी आपकी तारीफ का पड़था बना रहा हूँ टीडी टी करके।
1: अच्छा पिंके तुमने फिल्म नहीं देखी शन्नो जी के साथ?
0: पाजी क्या बताऊं यार, कल रात मैं ना एक जिन वाली फिल्म देख के सो गया सपने में। आप
1: क्या था उस फिल्म का हीरो?
0: नहीं आदम बो जिन। पाजी आदम बो चिल्ला रहे थे आप।
1: ओहो पिंके तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा क्या था वो सपना, पूरा सुनाओ ना।
0: पाजी सपने में ना मैं एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, ना बंदा ना बंदे की जात। करती एक गाड़ी आई और मेरे पास आके रुक गई।
1: अच्छा फिर?
0: फिर क्या पाजी, गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं था।
1: ओहो अच्छा, तो गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी?
0: हाँ जी पाजी, मैं उस गाड़ी में बैठ गया। मेरे अलावा उस गाड़ी में कोई मुसाफिर नहीं था।
1: अच्छा
0: हाँ जी, गाड़ी चलती चलती एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर पकौड़े वाली रेड़ी पर गर्मा गर्म पकौड़े थे, पर उनको बेचने वाला कोई भाई नहीं था।
1: अच्छा
0: हाँ जी भाजी, मिठाई की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी, पर बेचने वाला पूंडी भाजी जैसा कोई बंदा ही नहीं था। खंबे पर मेछी डाकू के पोस्टर थे, पर उस पर इनाम कोई भी नहीं था।
1: पिंके सुधर जाओ, वैसे बड़ा अजीब शहर था वो। आगे क्या हुआ सपने में?
0: आए पाजी फ्री में इस सपने के मजे ले जाओ टीडी टी करके। आगे का सपना जरा याद कर लू, नींबू पानी पिला दो थोड़ा। हाँ
1: पिंके अब यहाँ नींबू पानी। अच्छा तुम याद करो, मैं तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ।
0: पाजी तब तक आप ना श्रोताओं को एक गाना सुना दो, नहीं तो फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: पिंके गाना भी सुन लिया, अब बताओ ना सपने में आगे क्या हुआ।
1: पाजी उस सुनसान शहर में मैंना चलता जा रहा था।
0: अच्छा फिर?
1: मैं थक गया। वहां ना पार्क में एक बेंच पर बैठ गया। पार्क में ना अपने आप झूले झूल रहे थे, पर उन पर कोई बंदा ही नहीं था। पार्क की जमीन हरी भरी थी पर घास ही नहीं थी। फूल खिले थे पर पौधा ही कोई नहीं था।
0: पिंके अब उठो ऐसे पार्क से।
1: पाजी मेरी मर्जी, मैं जितनी मर्जी देर बैठूं, आप एवं ही पुलिस बन के रोब झाड़ रहे हैं टीडी टींग करके।
0: पिंके मेरे कहने का मतलब है आगे क्या हुआ सपने में, वो बताओ ना।
1: पाजी मैं चलता चलता एक महल के पास जा पहुंचा। जैसे ही मैं महल के अंदर गया, ओए होए होए होए, वहां ड्राइंग रूम में मैंने देखा।
0: क्या पिंके?
1: पाजी एक राजकुमारी उल्टी लटकी हुई है। वो राजकुमारी पहले तो मुझे देख के हंसी और फिर रोने लगी।
0: अच्छा पिंके वो राजकुमारी सुंदर थी?
1: पाजी पर जय जी ने ये बात सुन ली ना तो आपकी खैर नहीं है। सुंदर थी ना वो राजकुमारी।
0: पिंके तुमने राजकुमारी से पूछा कि वो पहले हंसी और फिर रोई क्यों?
1: हाँ जी बाजी, राजकुमारी कहने लगी कि तुम बहुत सुंदर हो इसलिए तुम्हें देख के मैं हंसी, और रोई इसलिए कि यहाँ एक जिन ने मुझे कैद कर रखा है। वो जिन थोड़ी देर में आएगा और तुम्हें जान से मार देगा।
0: अच्छा?
1: हाँ जी बाजी, मैंने राजकुमारी से बोला और राजकुमारी जी डोंट वरी बी हैप्पी और फिकर नॉट, मैं हूँ पिंका, पिंका बादशाह। ऐसे जिन को तो मैं एक मिनट में बोतल में बंद करके फ्रिज में ना लगा दूं तो पिंका बादशाह नाम नहीं मेरा। हाँ टीडी टींग करके। पाजी उस राजकुमारी ने ना मुझे जादू से शहद की मक्खी बना के ना द्वार पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद
0: क्या हुआ पिंके?
1: पाजी वो जिन आ गया।
0: अच्छा कैसा था वो?
1: पाजी बिल्कुल आप जैसा। उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी थी टीडी टी करके। आदम्बो आदम्बो चिल्लाने लगा।
2: आदम्बो आदम्बो आदम्बो।
1: यार मैं तो रात को ही दो ग्लास पानी से नहाया हूँ, फिर इस जिन को मुझसे बो क्यों आ रही है टीडी टी करके।

0: पिंके,
1: तुम शहद की मक्खी बनकर दीवार पर ही चिपके रहे।
2: नहीं बाजी, पिंके शहद की मक्खी ने ऐसे डंक मारे उस जिन की नाक पर कि उसकी नाक गोभी का पकौड़ा बन गई टीरीटी करके। पाजी, उसकी आंखें भी सूज गईं, मुंह सूज सूज के सूमो हो गया टीरीटी करके। फिर वो जिन हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा,
3: मक्खी मुझे माफ कर दे, आदम हो
2: जिन, बड़ी बो आ रही है तुम्हें मुझसे है, अब मैं डिओड्रेंट लगाऊं टीरीटी करके। ओए आदम्बो, माफी मांगनी है तो इस राजकुमारी से मांग जिसे तुमने कई सालों से इस महल में कैद करके उल्टा टांगा हुआ है टीरीटी करके।
1: वाह पिंके।
2: पाजी, यही नहीं, जिन आदम्बो ने माफी मांगी और मैंने कहा, ओए आदम्बो, अगर पिंके शहद की मक्खी के डंग से बचना है ना, तो चल फटाफट पानी बन के इस बोतल में बंद हो जा टीरीटी करके। बस पाजी, वो जिन पानी बन के एक बोतल में बंद हो गया।
3: आदम्बो।
2: अभी मैं उस बोतल को फ्रिज में लगाने ही लगा था कि सोन जकाम ने मेरा सपना ही तोड़ दिया टीडीटी करके।
1: पिंके, ये सपने में सोहन कहाँ से आ गया?
2: पाजी, यही तो सपने में ट्विस्ट है टीडीटी करके।

0: मेथी भाजी अब मैं जाऊँ, शन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है। टीड़ी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर।
0: अच्छा भाजी ओके बाय।
1: बाय पिंके। श्रोताओ आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पॉप टाइम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
6: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
7: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
8: LIC लाया है एक नया प्लान, नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
7: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC, हर पल आपके साथ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी का चंडीगढ़।

0: गढ़ केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी

नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी नैनी सिंह। बिना देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मौसम के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह ने, और इस गीत की फरमाइश की है सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, आराध्या सिंह, मोनिका, राघव, माधव, सार्थक, अनंत और कायरा ने, अंबेडकर कॉलोनी ढकोली मोहाली से।

अगली फरमाइश आई है हीरमणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखिलार वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। गीत है फिल्म गुप्त से, जिसे गाया है उदित नारायण और सुनीता राव ने।

अगला गीत है फिल्म जीने की राह से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। ये फरमाइश हमें भेजी है आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा ने, सेक्टर 9 पंचकुला से।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से. SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू.
2: अब प्रस्तुत करते हैं फिल्म मिस्टर नटवर लाल से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, और इस गीत की फरमाइश की है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने, और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने.

अगली फरमाइश है परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर परवीन ग्रोवर नीति ग्रोवर पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की आइए सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में

विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर के इस गीत को, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव ने, और डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: अब बारी है फिल्म हम किसी से कम नहीं से इस गीत की, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। इसकी फरमाइश हमें आई है VPO पल्ली का तहसील नोहर ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से, विनोद कुमार जांगड़ा, श्योपत खीचड़, रामनिवास छीपा और योगेश शर्मा ने ये फरमाइश भेजी है।

0: अब सुनते हैं डॉन फिल्म से ये गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने. फरमाइश आई है कृष्णा पार्क्स दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सीटी दीवाना और गुरवंश सिंह की.
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा. आहा. और

अगली फरमाइश आई है सेक्टर 9 पंचकुला से, जिसे भेजा है रमेश गुलाटी, शह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, दिवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी, दीपांशु गुलाटी ने। ये गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अगला गीत है फिल्म प्रेम नगर से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। फरमाइश भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने।

अब बारी है तीन देवियां फिल्म से इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने भोपालगढ़ राजस्थान से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो साथी नानी सिंह को इजाजत। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको

0: को भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर

0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकालेखा और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
2: कार्यक्रम यादों की महफिल, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।

0: Mari ya, ya, ya, ya.
1: Mari sun, sun, sun, sun.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: ये आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव

0: स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद, आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: और अब रवि का

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

फिल्म बहुरानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन क्या था, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना। स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे। फिल्म का नाम था साथ साथ।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर की रचना, जगजीत सिंह का संगीत, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

0: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद 1:05 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम रहेगा सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित होगा दोपहर 2:00। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम मन चाहे गीत का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3:00। 3:30 पर कार्यक्रम नाट्य तरंग में सुनिए नाटिका प्लास्टिक की घास का पहला भाग। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए बॉम्बे टॉकीज। आज होगी कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।

शाम 5:20 ये समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। शाम 5:30 पर कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग में सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के विजेता श्री रवि जायसवाल से रमेश कपूर की बातचीत।

6:30 पर आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गीत। पंजाबी गीत आप फिर सुन पाएंगे शाम 7:47 पर और फिर कार्यक्रम सुर सांझ में रात 10:32 पर। शाम 7 बजे सुनिए संगीतकार उषा खन्ना द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला।

6:30 पर आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गीत। पंजाबी गीत आप फिर सुन पाएंगे शाम 7:47 पर और फिर कार्यक्रम सुर सांझ में रात 10:32 पर। शाम 7 बजे सुनिए संगीतकार उषा खन्ना द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला।

हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का दूसरा भाग। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेत्री रेखा पर केंद्रित रहेगा।

रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की सहयोगी टीम सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री नवीन ने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर यह कर रहे हैं। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच नितिन नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आज जिस तरह की स्थिति हो रही है, वे देश की सुख शांति के साथ विकास को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचकुला जिले में रायपुर रानी तहसील में तैनात रजिस्ट्री क्लर्क अमित कुमार को 70,000 रुपये

0: रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्लॉटों की खरीद फरोख्त के संबंध में रजिस्ट्री करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 70,000 रुपए तय हुई थी। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को इस मामले में पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाकर ई साक्ष्य जुटाने पड़े, क्योंकि आरोपी ने रिमोट चाबी से अपनी गाड़ी खोलकर शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम तहसील परिसर में खड़ी अपनी गाड़ी में रखने के लिए कहा। ब्यूरो की पंचकुला की टीम ने आरोपी से गाड़ी खुलवाकर उसमें रखी गई 70,000 रुपए रिश्वत की राशि बरामद की और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 अथवा 1800180202 पर दें। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9417891064 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। जींद जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ स्थल पांडुपिंडारा पर आज श्राद्ध अमावस्या के अवसर पर देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया और पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थ के महंत राघवानंद ने बताया कि पांडुपिंडारा की इस पावन धरती का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार इसी पवित्र भूमि पर अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। पंचकुला के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बेसिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में कल तृतीय अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं शुरू हो गईं। इन राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में देश भर के पुलिस बलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य पुलिस कर्मियों में खेल भावना को बढ़ावा देना, आपसी तालमेल मजबूत करना और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराना है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 11 अक्टूबर तक मतदान केंद्रों पर विशेष नामांकन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य मतदाता सूची में नाम दर्ज न करा पाने वाले पात्र नागरिकों का नामांकन कराना है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 हो रहे ने, आओ हुण सुनदे आं परदेशी खबर।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तों परदेशी खबरां सुणो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीती शाम जलंधर के बल्टन पार्क स्टेडियम का निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य आगामी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेना सी। उन्होंने अधिकारियों को आलमी पद्धरी बुनियादी ढांचा, पुख्ता सुरक्षा, सुचज्जी आवाजाही और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम यकीनी बनाने के निर्देश दिए ने। दिन वेले चंडीगढ़ च उच्च पद्धरी समीक्षा मीटिंग तों बाद मुख्यमंत्री मान ने स्टेडियम का दौरा करके बुनियादी ढांचे के विकास नवीनीकरण के कामों और हिस्सा लैन वाली टीमों के दर्शकों लिए किए जा रहे प्रबंधन की प्रगति का निजी तौर पर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन एक व्यापक योजना और पुख्ता सुरक्षा प्रबंध लागू करने के निर्देश भी दिए ने। भारत सरकार के कौमी घट गिणती कमिशन NCM के चेयरमैन हरजीत सिंह गरेवाल ने बीते कल चंडीगढ़ के UT गैसट हाउस में चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों मीटिंग की। इस दौरान घट गिणती भाईचारे जुड़े वक् वक् मुद्दों उन्हों की सुरक्षा से भलाई संविधानक कानूनी अधिकारों की सुरक्षा से सरकारी कल्याणकारी योजनावां के प्रभावी तरीके लागू करने की समीक्षा की गई। मीटिंग दौरान प्रशासनिक विभागों दरम्यान बेहतर तालमेल स्थापित करन ते घट गिणती भाईचारे संबंधित शिकायतों का समाबद्ध हल यकीनी बनाने पर भी चर्चा की गई है। चेयरमैन गरेवाल ने घट गिणती भाईचारे की भलाई, सिक्ख्या, समाज भलाई, महिला के बाल विकास न जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने घट गिणती भाईचारे के समाजिक ते आर्थिक विकास लिए संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही वक् वक् योजनावां की जानकारी भी ली। सबका डिप्टी जनरल मैनेजर विंग कमांडर रजिंदर सिंह वालों जिला सैनिक भलाई दफ्तर विखे जिला जलंधर कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर की अगवाई करद पंजाब एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन का 48वां रेजिंग डे मनाया गया। समागम दौरान जिला रक्षा सेवावान भलाई अफसर लैफ्टिनेंट कर्नल भुपिंदर भोला तो इलावा मुख्य नियोजकों के नुमाइंदे अधिकारी वक् वक् खेतर में तैनात पैसको कर्मचारी वड्डी गिणती में शामिल होए। लैफ्टिनेंट कर्नल भुपिंदर भोला ने

आइए सुनते हैं फिल्म बॉबी का गीत, शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: पेश है फिल्म ये वादा रहा का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में. गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने.

0: फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है, तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाजें लता मंगेशकर और सखियों की, शब्दकार हसरत जयपुरी और धुन शंकर जयकिशन की।

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाजें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी, किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की है भाई। बहुत ही मजा आता है जब हम तोता पालते हैं या हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं उन्हें ढूंढने के कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहां कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू जैसी ही है, मूंगफली ना मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूं। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूँ, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है। परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी को कैद करना चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही है, फिल्म का नाम है बारिश। अच्छा ये बताइएगा किसी पंछी से आपको कोई खास लगाव रहा है कभी?

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंचों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं ना कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंचों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना? बताइएगा कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक शोधा लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। वही एक शोधा लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं, तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इस उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है, क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे

द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है पंछी बनी उड़ती फिरूं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया, और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूं। वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहू का सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं, तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियाएं आती हैं, उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है। मेरी बेटी को अच्छा चिड़िया पालने का बहुत शौक है। कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ, इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज में मम्मी मम्मी बोलता है तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है, तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं, लेकिन जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: जवाब दिया है लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है? सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं तो। हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख मिचोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारह मास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके घर को बनाया जो बार बार टूट जाता था। बहुत बड़ा काम है ये। और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है। इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे, अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दी इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।

0: दिलाया।
1: चिट्ठी खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिया के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

इस तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं, जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग

0: 120 महिला कर्मी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
3: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
5: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
6: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारे साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा

0: डाटा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
4: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
3: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे।

0: वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा, शुरुआत कर रहे हैं इसी गाने से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो

0: साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, पार्वती।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत महबूब की मेहंदी फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष मिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना किशोर कुमार की आवाज़ है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखूद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और इनके मित्रगण, बीर शहर से रंजीत कुमार नामदेव, शोरात रितेश, आकाश रश्मि, रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

0: कभी।
1: लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना, रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन, पलक कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर तेजश्री कामले, अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट पर पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे। स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक

0: चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या ऐन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनांचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री H.P. शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गईं। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसे शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थी कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके कि कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे हाय, लगता है चले गए। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
3: नहीं।
2: अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
3: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
3: क्या बताऊं?
2: अच्छा अच्छा, ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
3: नहीं।
2: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
3: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
2: क्या?
3: ट्रांसफर।
2: ट्रांसफर आपकी?
3: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे
2: मिली। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया?
3: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
2: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
3: आगरा।
4: हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन? पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई,

0: मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
1: हाय कौन था बहन?
0: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
1: दिल्ली में था कि बाहर?
2: नहीं बहन, ये बात नहीं। आए जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
1: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
0: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
2: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
1: बहन फिर हुआ क्या?
2: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो, किस्मत।
0: भाई साहब की नौकरी?
2: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
0: अनर्थ?
2: आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
1: हाय राम,
0: खबर करो बहन, धीरज रखो।
3: हौसला रखो।
2: तुझे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
1: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
2: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
1: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो। भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा। मन को शांत रखो बहन और इसका कोई उपाय सोचो।
2: ठीक तो कहती हो बहन।
0: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो। वो जलपन मैं भिजवाई दूँ।
2: नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
0: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
1: हाँ हाँ, हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
0: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
3: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
0: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछिए तो।
3: ना जाने कौन है।
0: किस कमबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
3: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
0: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
3: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी आप?
3: कृष्ण तुम
5: इस वक्त यहाँ?
3: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
2: क्या बताऊं बेटे,
5: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
3: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
5: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
3: किसने, किस पर?
5: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
3: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहां के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
5: ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
3: बेशक।
5: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
3: रजा, रजा।
5: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
3: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
5: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं जबकि सोचने की जरूरत

0: आपको है, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
1: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
0: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
1: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक? दिमाग चल गया तुम्हारा?
0: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका हो, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विधि ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
1: बेवकूफ, पागल, गधे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
2: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
0: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
1: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
2: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
0: I'm sorry daddy, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
1: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
2: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, आप जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
1: करना क्या है, क्या हो सकता है? वो नहीं बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
0: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
2: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
1: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
0: कल से स्ट्राइक?
1: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
3: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
1: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
3: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
4: मामी मामी। पिताजी आप? बाप रे,
1: कौन?
4: मैं कोई नहीं।
1: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
4: उषा? हाँ। नहीं
1: तो कौन घुसा है अभी घर में?
4: उषा?
1: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
4: ओ, किसे कोस रहे हैं?
1: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
4: ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
1: बुलाओ उसे।
4: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
1: ओ, भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्ने नन्ने मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौट आया कॉलेज से?
4: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
1: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
4: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
1: हौसला रखो लाजवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। विनय।
5: जी पिताजी।
1: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
5: इफ यू डोंट माइंड पिता, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
1: कैसा सवाल?
5: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
1: विनय,
5: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
1: खबर आज ही आई है।
5: आज ऑर्डर आए हैं आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
1: तुम्हारा मतलब क्या है?
5: खबर पहले

0: जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
1: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है।
0: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
1: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
0: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है? सब कहेंगे आगरे के पागल खाने में जा रहे हैं।
1: तू तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
0: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बता देता हूं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
1: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
0: कैसे जा सकता हूं, यहां मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
1: तुम्हारा सोशल सर्कल?
0: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
1: क्या तू यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा, खर्चा कौन देगा?
0: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
1: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
0: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
1: और मेरे इस घर बार के साथ, इसके साथ नहीं रहोगे?
0: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगरे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
1: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से।
2: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
0: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
1: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जा रह सकता, रह ले।
2: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठा है सारा घर बार उजड़ जाएगा।
0: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
1: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूँ? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूँ और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूँ।
0: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
1: हाँ, कर रहा हूँ। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
3: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
4: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
5: लंच के बाद आना।
4: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
5: तो फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
4: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
5: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
6: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई, बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
5: हाँ, चलो, चलो, चलो, चलो।
4: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
5: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
6: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
5: है। चलो चलो चलो चलो,
7: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
6: नमस्कार बड़े बाबू जी।
5: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
8: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
7: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
6: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
5: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
7: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
9: कितने चाय?
7: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
9: और पैसे?
8: ये ले, मैं देता हूँ।
5: अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता।
6: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
8: एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
6: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
8: ले ले, ये ले 10 का नोट, और लपक के ले आ जा।
7: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
8: मगर वो क्या कर सकता है?
6: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाइयों?
5: सही बात,
6: सही है।
8: अच्छा, तो फिर पहले मैं

0: करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ और क्या।
1: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
0: हाँ सो तो है,
2: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
1: बिल्कुल
3: सही बात,
1: आज ही मिल लीजिए।
0: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत।
4: अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
3: बिल्कुल ठीक बात है।
0: तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
5: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
6: मे आई कम इन सर?
7: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
0: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
7: हाँ हाँ बोलो।
0: सर वो बात ये थी कि
8: आपने तो इतना कुछ किया करमारकर साहब,
9: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
7: हाँ याद है।
9: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था। सर
7: याद है बरोबर।
9: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
7: बरोबर।
9: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
7: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। यू हैव डन अ लॉट फॉर मी।
9: आपको सब कुछ याद है?
7: ऑफ कोर्स।
9: अगर सचमुच अपने सारे कैरियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
7: बोलो बोलो क्या काम है?
9: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
7: मालूम जरूर है पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
9: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
7: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
9: बेशक सर बेशक, आप रुकवा सकते हैं।
7: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
9: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर
7: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
9: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलूं मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
9: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
7: क्यों?
9: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं। और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सर
7: ओ आई सी,
9: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा। सर
7: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
9: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
7: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
9: नाल सर वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड।
7: अच्छा कभी देखा नहीं।
9: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
7: ओ आई सी।
9: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
7: कहाँ?
9: वो घर के आंगन में सर।
7: लोधी रोड के क्वार्टर में?
9: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
7: ओ वो तो 10-12 मील होगा।
9: यस सर।
7: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
9: आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
7: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
9: सर है तो दिल्ली ना।
7: यस यू आर राइट।
9: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
7: हम रुकवा सकते हैं?
9: यस सर आप रुकवा सकते हैं।
7: ओके हम रुकवा देंगे।
9: थैंक यू सर।
7: नो नो नो नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
9: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
7: ओके
9: थैंक यू सर, थैंक यू।
7: मिस्टर शर्मा।
9: यस सर।
7: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
9: बस सर आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
7: इज दैट ऑल?
9: यस।

0: ओके हम लिख देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ सर।
0: अच्छा बट लिसन,
2: यस सर,
0: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता।
0: हाँ हाँ ये ठीक है।
1: थैंक यू सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: पर मिस्टर शर्मा,
2: यस सर,
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं। भाई स्टाफ स्ट्रेंथ वही रहेगी ना।
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
0: सुनो नालगड़ी मेंशन कर दे।
1: नो नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
0: मिस्टर शर्मा,
2: यस सर,
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
2: वो तो सर
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
2: ओके सर,
0: ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सर,
0: ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू।
3: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीना नाथ। आपको बता दें इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्ट्रेस का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं। और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में। वहां रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी, मणि रत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, VCR पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तू अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेसिडेंट था।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था, MGM

0: हॉस्पिटल में और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा और फिर चलता रहा डेढ़ साल बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में मुझे फिल्म्स में कुछ करना है मुझे पता नहीं क्या करना है बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने डेढ़ साल अपने दिए एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है तो फिर रहने दो
1: तो गौतम जी पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो कोई राइटर बनना चाहता हो कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप
0: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी
0: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी।
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में
1: हाँ।
0: कोई पहचान नहीं थी मुझे पता चला कि जेवियर्स इन

0: पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी.
0: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है. तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी.
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे फिल्म में, इंडस्ट्री में
1: हाँ.
0: कोई पहचान नहीं थी. मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ. और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था. शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था. तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया. हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए. वहाँ से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला. मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी. वहाँ से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए. एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की. तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब. अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे.
1: अच्छा.
0: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में. फिर मैंने बोला कि अच्छा 1.5 साल मैंने काम किया उधर और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है. तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं. मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है. और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके. उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके. तो उनके पीछे लगा रहा मैं. और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो. तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में.
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप?
0: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब DVD हुआ करती थी. तो एक DVD लाइब्रेरी थी बम्बई के एक इलाका है बैंड्रा, और वहाँ का जो ओनर था DVD लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई. तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था. तो मैंने बोला कि यार छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें. तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया. और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर होके तुम असिस्ट करना चाहते हो. बोला हाँ अब मैंने छोड़ दिया है मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके. वहां से शुरुआत हुई.
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया.
0: हाँ.
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
1: जी,
0: जो बड़े डायरेक्टर है Raid 1, Raid 2, आमिर, नो वन किल जैसे का के, वो एसोसिएट थे अनुराग के. और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा. तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5-6 AD होते थे. एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा. ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
1: जी,
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4-5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो. तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम में कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी,
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही. तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ. तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
1: जी.
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है. तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स. सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को. तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो 1-2 जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको

0: ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था, तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई।
1: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम।
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है, तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है।
1: जी, सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको वो ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है।

0: कि किसके पास जाएं, तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
1: जी,
0: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ, तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
1: जी,
0: वो लॉक हो गया।
1: तो ऐसे मुश्किल मौके
0: ऐसे भी कभी कभी होता है
1: जी,
0: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द फोर कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये चार जन एक फैमिली के लगने चाहिए, तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर, मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
1: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
0: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है,
1: पर
0: हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है, कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है, हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजीशन, एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
0: हाँ, तो ऐसे भी थे एक्टर, एक एक्टर है, दो चार साल पहले मैंने उसके साथ तीन चार बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया,
1: हाँ,
0: और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए,
1: हाँ।
0: तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा, ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं,
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए, तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके, बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्कि,
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार, हाँ, हाँ, जैसा कह रहे थे,
0: हाँ,
1: ऐसा लगता है वो उस किरदार को बहुत, हाँ, अच्छी तरह से निभा सकती हैं,
0: हाँ,
1: तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक,
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने. फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम.
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है. नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के.
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था. हमने ऑलमोस्ट फोर एंड हाफ मंथ्स कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की. जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए, वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो. लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ. आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया.
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे. बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे. काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हैं
1: और टाइम बहुत कम था
0: जी. अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है?
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था.
0: जी, पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता. ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं. फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
0: जी.
1: तो वहाँ अलग एक्टर्स होते हैं. जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है. कर पाते हैं इवेंचुअली बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है. बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है.
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ.
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है.
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: में? कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूँ. क्या है क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है.
0: हाँ.
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने. तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया.
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
1: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में.
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब
1: ताकि जो लोग

0: पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शियरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो ये 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनके उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठ

0: करता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए. बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इंपॉर्टेंट थिंग है. कि अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है. फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता. फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
1: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से वो
0: हाँ वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए.
1: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है.
0: बट कभी कभी हो जाता है जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है. जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को. तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का.
1: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे थे,
0: हाँ, जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया.
1: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
0: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा. मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी. इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो. आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है. आई मे बी रॉन्ग बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट.
1: मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह से आपको एक अंदाजा.
0: वो होता ही है. मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है.
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिल लेते हैं.
0: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
1: जी.
0: सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे. यहाँ बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए. इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप है हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो. एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो. बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए. तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए. क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके. आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है. वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे. तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है. इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है, कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन.
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं.
0: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे.
1: हाँ.
0: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में. फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज, तो आपका फायदा उठाया जाएगा.
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए. और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक वही एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही

0: कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: तरह से? जैसे आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि

0: कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो
1: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
0: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
1: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
0: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उनमें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
1: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
0: हाँ, वो दिल्ली 6 का रहमान का रहना तू,
1: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ, उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को NSD के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर

0: डेस्को की यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
1: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी।
0: हाँ, वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा, बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
1: अपने रील्स या ऐसे अपने काम।
0: रील्स, ह्यूमर, कुछ भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए। कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
1: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
0: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा। घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली। तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में, बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में। बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर। ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस काम से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसे कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी, इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है। अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए, रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आराम नगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन-कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई-कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन।

0: तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं
0: चूज करते हैं बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी
0: आई थिंक वो ही है एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है इवन दो दोनों दिल्ली की हैं बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने उनका वर्कशॉप भी हुआ था बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों
1: अपने किरदार को पकड़ने के अच्छी तरह
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे
0: नहीं भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजंस को कास्ट करे बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग और फंडिंग इज वेरी डिफरेंट तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजंस हेंस दिस वाज डन
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है मैं अच्छा दोस्त है वो बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में और जब वो उसका पहला दिन शूट का था और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ जब बड़े कैमराज होते थे लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं वो फ्रीज हो गया था वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया उसको ये किया और वो उसने किया बट नॉट टू हिज एबिलिटी फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा उसने काफी फिल्में की बाद में लेकिन ये हुआ था उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी।
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी ऐसे रॉक लो मत या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
0: बिना दो बच्चे थे स्लम के बच्चे थे उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था तो वहाँ के दो बच्चे कास्ट किए थे उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी तो वो भी हो सकता
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है
0: हाँ वो गिफ्टेड था वो कॉन्फिडेंट था नेचुरल था बढ़िया था वो
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है हालांकि जैसे आपने बताया
0: हाँ मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ होपफुली वो बन जाए
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उससे
0: नहीं,
1: बात
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया आपने डायरेक्शन तो आपने कहा
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी
1: अच्छा
0: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ फिर वो भी नहीं बन पाई फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे
0: जिंदगी कैसी है बहेली
1: ठीक है तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए फिल्मों की किताब, पढ़िए फिल्म मेकिंग की किताब, पढ़िए एक्टिंग की किताब, पढ़िए कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए, दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और अब

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत

0: अच्छे स्थिति में है। जो मृत्यु दर होता है मॉर्टेलिटी है वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियात जांच की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण करने के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
1: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं, जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा है कि हाल के उपचुनाव में पार्टी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने के इच्छुक लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपने चुनावी हार की भरपाई के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति की वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। रूस द्वारा यूक्रेन के जाओपीरिजिया क्षेत्र में किए गए हवाई हमलों में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हमले का अमेरिका से रूस से डीजल खरीदने के समझौते की घोषणा के ठीक एक दिन बाद हुआ। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से रूस को युद्ध के लिए वित्तीय मदद मिल सकती है। सरकार ने उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि लेख में ऑपरेशन की प्रकृति और क्रियान्वयन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। इकाई ने मीडिया संगठनों को सलाह दी है कि वे सत्यापित जानकारी का उपयोग करें। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजना से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने पीएम राहत योजना का उल्लेख किया। इसके अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार

0: की मदद करने वाले लोगों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार भी मिलता है। फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं अब सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सबसे पहले लीजिए पेश है।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं अब सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सबसे पहले लीजिए पेश है गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन, फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली।

श्रद्धा और रविंद्र जैन के ही संगीत से सजी ये एक और रचना हिना फिल्म के गीत को गाया है लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद और सतीश ने।

0: श्रोता लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सईद का गाया गीत था फिल्म थी हिना। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी।

0: Vanguard.
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ FM 107.2 MHz पर प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। अल्जाइमर की बीमारी एक दिमागी बीमारी है। ये डिमेंशिया की सबसे आम किस्म है जो व्यक्ति को धीरे धीरे परेशानियों व मुश्किलों की तरफ से ले जाता है। ये खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलती है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। कई शोध में पाया गया है कि ये बीमारी 30 या 40 साल के बाद भी शुरू हो सकती है। यहाँ तक कि आजकल ये बीमारी 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल जाती है। इस बीमारी की खोज सबसे पहले जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने 1906 में की थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम उनके नाम से अल्जाइमर हो गया है। इस बीमारी में व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर साल अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक हो जाए और उन्हें इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। इसे व्यक्ति वक्त रहते इसका इलाज करना शुरू कर सकता है। यह बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अल्जाइमर बीमारी एक दिमागी बीमारी है। इस रोग में दिमाग के कुछ ऐसे हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति की सोचने, समझने, याद करने और फिक्र करने की क्षमता के साथ साथ जबान पर काबू करते हैं। उन हिस्सों पर यह बीमारी असर डालती है। अल्जाइमर बीमारी का सबसे सामान्य प्रकार डिमेंशिया है। ये बीमारी बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होती है जो धीरे धीरे याद करने और सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इस बीमारी के कारण व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कामों को वह आसानी से नहीं कर पाता। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के बारे में बहुत अध्ययन किए हैं, परंतु कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये एक ऑटोपैथिक रोग है। आज के लम्हे प्रोग्राम में हम अल्जाइमर बीमारी के उस लक्षण और उसके कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आपके आरजे चेतन से। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने सामान्य कामों को भूलने लगता है। लोग समझते हैं कि ये बुढ़ापे के कारण है। भूलना एक आम बात है, परंतु हर चीज को भूल जाना ये एक खास विषय है, इसीलिए व्यक्तियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। रोजमर्रा के कामों में परेशानियां आने लगती है। व्यक्ति आसानी से अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता। कार्य करने की क्षमता खत्म होने लगती है। व्यक्ति अपनी जीवन शैली की सामान्य बातों को भी धीरे धीरे भुलाने लगता है। किसी भी व्यक्ति का नाम या घर के आसपास की मशहूर जगह या रास्ते भी भूल जाता है। ये सब अल्जाइमर के लक्षण है। अल्जाइमर की बीमारी का एक लक्षण ये भी है कि इस बीमारी में व्यक्ति की जबान लड़खड़ाने लगती है और वह किसी भी बात को सही तरीके से नहीं कह पाता है। हर बात को कहने में अटकने लगता है और अटक अटक कर भी बात करते हैं। उसकी जबान उसके काबू में नहीं रह पाती। किसी भी काम को या किसी भी मसले को हल करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। वह सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क सही से काम नहीं कर पाता। व्यक्ति को सामाजिक होने में परेशानी होती है। वह आसानी से लोगों से घुलमिल नहीं पाता और अकेले रहना ही पसंद करता है। अल्जाइमर के रोगियों के पर्सनालिटी में बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। अल्जाइमर बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए हैं और इसके कारण जानने की भरपूर कोशिश की है। अल्जाइमर बीमारी के कई कारण वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा भी गए हैं। ये पर हम कुछ कारणों के बारे में बताएंगे जो अल्जाइमर बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। वंशानुगत या जेनेटिक कारण की वजह से भी अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि परिवार के किसी सदस्य में यदि अल्जाइमर की बीमारी पहले रही है तो ऐसे में आने वाली

पीढ़ियों में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। व्यक्तियों के जीन्स दूसरी पीढ़ियों में जाकर इस बीमारी के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। अल्जाइमर बीमारी का एक कारण विटामिन B12 की कमी का भी होना भी है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है, ऐसे में व्यक्ति का दिमाग कमजोर होने लगता है। इसे व्यक्ति को सामान्य दैनिक क्रियाकलापों को याद रखने में परेशानी होने लगती है। शरीर को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। यदि सही से नींद के चक्र को पूरा न किए जाए तो ऐसे में व्यक्ति का मस्तिष्क या दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसका फलस्वरूप अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सिर में दर्द भी अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी का कारण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार सिर या माइग्रेन की समस्या हो तो उसे इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। शरीर पर अतिरिक्त वसा होने के कारण भी दिमाग की नसें कमजोर हो सकती है। ये अल्जाइमर का कारण बन सकता है। चिंता, तनाव या डिप्रेशन इत्यादि मस्तिष्क के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ये दिमाग के नसों को सुखा सकते हैं। इससे अल्जाइमर की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैं बताने वाला हूँ, इससे भी अल्जाइमर का रोग हो सकता है। जैसे मधुमेह की बीमारी रहने के कारण, देर से सोने और जागने के कारण, पोषण से भरपूर खाना न लेने के कारण अल्जाइमर हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं इसका निवारण बताने जा रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि अल्जाइमर की बीमारी का कोई भी सटीक इलाज नहीं है। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनकी अच्छी देखभाल की जाए, उनका खास ख्याल किया जाए, उसके साथ साथ उन्हें अच्छे खाने पीने, पोषण से भरपूर आहार, व्यायाम, सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस तरीके से किसी हद तक उसकी उस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी की सबसे आम किस्म है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 55 मिलियन लोग इस भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी मस्तिष्क में याददाश्त को नियमित करने वाले हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति का अस्तित्व, उसकी पहचान, शख्सियत, व्यवहार, उसके मिजाज, यहाँ तक कि उसके पूरे याद करने वाले हिस्से पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डिमेंशिया की बीमारी के कम से कम 100 किस्में होती है, परंतु सबसे जानी पहचानी किस्में अल्जाइमर है। स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ये बीमारी आजकल तेजी से लोगों में फैल रही है। ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है, इसीलिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किस व्यक्ति को अल्जाइमर रोग है तो उसे तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। Well, dear friends, with this very useful information about Alzheimer's, we wrap up the program for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश है प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रवि जायसवाल, जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मलोया कॉलोनी चंडीगढ़ में साइंस टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण को देखते हुए श्री रवि जायसवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से

0: नवाजा गया है। इनकी शिक्षण शैली की खासियत ये है, या यूं कह ले कि इनके पढ़ाई कराने का तरीका ऐसा है कि साइंस को केवल किताबों और सिद्धांतों तक सीमित ना रखकर उसे व्यवहारिक और रोचक तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रवि जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले तो आकाशवाणी चंडीगढ़ का धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: रवि जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 जो आपको मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आप हमें ये बताएं कि जब आपको ये जानकारी मिली कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से आपको नवाजा जा रहा है, तो उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, या यूं कह ले कि पहला रिएक्शन क्या था?
1: ये तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था मेरे लिए, और जानकर एकदम से कुछ अलग भी लगा कि और अजीब लगा कि शायद मैं जो इतने सालों से कर रहा था वो सफलता मुझे मिल गई। मुझे उसी समय लगा कि जो बच्चों के लिए काम किया है और जो मैं करता आया हूँ वो सफल हो गया।
0: जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर से लगभग 154 शिक्षक जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो उनमें 48 टीचर्स का चयन हुआ। इस प्रोसेस में आपका चयन होना आपके लिए कितना विशेष अनुभव रखता है?
1: देखिए कि एक बहुत बड़ी प्राप्ति होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कार मिलता है, तो वर्षों की मेहनत इसमें लगती है। हमारा जो चयन है वो पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद फिर स्टेट लेवल से हमारा चयन होता है। तो वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपका चयन करना है तो उसी के लिए आपको बहुत काम करना होता है। फिर आपकी ज्यूरी सिलेक्शन करती है, तो उससे आगे हम जाते हैं। उम्मीद तो थी कि हो जाएगा, पर फिर भी थोड़ा संशय तो मन में रहता है, पर हो गया, अब बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो जब आप माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से आप ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे, तो कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में?
1: ये अनुभव तो अपने आप में अनूठा अनुभव होता है। कि आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद वो आपको यही कहेगा, और अलग ही था वो दिन। मतलब जब उस दिन का इंतजार जब अनाउंस हुआ तो मैं कर रहा था कि कब वो दिन आएगा और कब मैं स्टेज पर जाऊंगा और वो अवार्ड लूंगा और मेरा स्कूल, मेरा चंडीगढ़ वो गर्व महसूस करेगा। और उस दिन बहुत गर्व महसूस हुआ अपने पेरेंट्स के लिए, और स्पेशली अपनी वाइफ जिसका टाइम शायद मैंने लेके और स्कूल को दिया, बच्चों को दिया, और उसकी सपोर्ट की वजह से, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हुआ।
0: जी, तो ये जो पुरस्कार आपको मिला है, सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? आपके परिवार का, आपके कोलीग्स का, बच्चों का, किसका सबसे बड़ा सहयोग रहा?
1: यहाँ मैं कहूंगा कि इसमें जिनके लिए हम काम कर रहे हैं बच्चे, मैं सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दूंगा, क्योंकि उन बच्चों के साथ काम किया तो उन बच्चों की प्राप्तियों से भी मेरा ये पुरस्कार जुड़ा है। क्योंकि आए वर्ष हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जा रहे थे, सक्सेसफुल हो रहे थे, वहीं से मुझे उम्मीद जगी कि मैं अच्छा कर सकता हूं और अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो बच्चों को सबसे पहला मैं अपना इसका श्रेय दूंगा, उसके बाद स्कूल, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ के साथ ही अध्यापक, उनके सहयोग के बिना आप नहीं कर सकते। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको साथ तो चाहिए, अकेला कभी कोई अकेला अचीवमेंट नहीं कर सकता। तो कुछ मेरे साथी टीचर हैं, वो सुन रहे होंगे, उनका बहुत योगदान रहा है मेरी इस प्राप्ति में।
0: जी, और रवि जी, क्योंकि आप गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मलोया कॉलोनी चंडीगढ़ में साइंस टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो साइंस टीचर बनने की आपकी ये जो यात्रा है, या यूं कह ले ये जो सफर है, कैसे शुरू हुआ?
1: मेरे जो चाचा जी हैं वो हिमाचल प्रदेश में अध्यापक हैं, तो उनको देखकर मैं बड़ा हुआ। छोटा होता था तो उनके साथ स्कूल भी गया एक दो बार, तो काफी मुश्किल रास्तों पर जाना पड़ता, तो उस समय सड़कें थी पर बसों का आना जाना वैसा नहीं होता था फ्रीक्वेंट, तो उनके साथ कितनी बार मैं छुट्टियों में जाता था तो पैदल जाता था। तो मन में एक आया कि ऐसे टीचर बनना है, और साइंस मेरा विषय था तो साइंस विषय में मुझे रुचि भी थी, तो वही मैंने चूज किया और पढ़ाई भी इसके लिए की और टीचर बना। जब मैं टीचर बन गया तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे एक ऑडियो सुनाया बचपन का कि आप इस ऑडियो को सुनिए, तो मैंने ऑडियो सुनी तो उसमें मैं खुद ही बोल रहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा।
0: जी,
1: तो मतलब मुझे पता चल गया कि ये पहले से ही
0: शुरू से ही आपको टीचर बनना था।
1: जी बिल्कुल।
0: पढ़ाई आपकी कहाँ पे हुई?
1: कुछ पढ़ाई मेरी कालका हरियाणा में हुई, और उसके बाद 9वीं के बाद मैं चंडीगढ़ आ गया, और चंडीगढ़ में सरकारी हाई स्कूल 40 सेक्टर में है, वहां पर से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद 15 सेक्टर के स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई हुई, और बाकी की पढ़ाई भी मैंने चंडीगढ़ से की है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन GCM, पहले अब नाम उसका पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया, वहां से मैंने BSc करी, और BEd मैंने बीस के कॉलेज से की है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20।
0: जी, तो बचपन में ही साइंस के प्रति आपकी रुचि थी, या किसी को देखकर घर में, या रिश्तेदारी में, या आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति था आपकी नजर में जिससे आपको साइंस विषय को लेकर बहुत ज्यादा प्रेरणा।

0: साइंस का जो श्रेय है, साइंस या मैथमेटिक्स जो इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ, इसका श्रेय मैं अपने हेडमास्टर बहादुर सिंह जी को दूंगा। तो बेशक शायद उनके 5 या 6 ही लेक्चर मैंने, हेडमास्टर थे तो लेक्चर इतने तो नहीं लिख पाते थे, पर उन्होंने 5-6 लेक्चर्स हमें ऐसे दिए कि मन में आया कि कितना आसान है ये। उन्होंने इंटरेस्ट वो जगाया कि मैथ को, नहीं तो नॉर्मली क्या कहते थे, क्वेश्चन याद कर लो। तो मुझे लगता था कि क्यों याद करना है ये क्या। तो फिर जब वो सर आए तो उन्होंने अलग ढंग से पढ़ाया, तो वहीं से मन में एक जग गया कि इसी को करना है। तो श्रेय मैं अपने वो रिटायर्ड हैं अब हेडमास्टर सर उनको दूंगा, बहादुर सिंह
1: जी। तो रवि जी, क्योंकि आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे जिनको साइंस सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन क्योंकि आप साइंस सब्जेक्ट को बहुत ही रोचक ढंग से और उसे सरल बनाकर विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, तो आप अपनी क्लास में किस तरह के प्रयोग करते हैं ताकि आसानी से बच्चों को साइंस विषय जो है वो समझ में आए।
0: वैसे जो साइंस सब्जेक्ट है बिना एक्टिविटीज के पॉसिबल ही नहीं है। क्लासरूम में छोटी छोटी एक्टिविटीज कराकर बच्चों को, जैसे इंडिजिनियस मटेरियल से, कोई बड़े बड़े अपैरेटस नहीं चाहिए होते। क्लासरूम में अगर आपने एक मोमबत्ती ले गए और एक माचिस ले गए तो उससे भी कितने एक्सपेरिमेंट आप करा सकते हैं, एक ग्लास लेके, पेपर लेके। तो बच्चों का इंटरेस्ट कैप्चर करना वो बहुत जरूरी होता है अगर साइंस सिखानी है। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कुछ ना कुछ चीज नई लेके जाऊं। अगर आपने टेबल पे वो मोमबत्ती और माचिस रख दी तो उनके मन में रहेगा अभी कुछ होगा। खैर, एक्सपेरिमेंट भी करना होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि क्लासरूम में कुछ ऐसी चीज लेके जाऊं जिससे बच्चा कैप्चर हो, क्योंकि अगर कैप्चर हो गया तो उसके बाद सीखना अपने आप में आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब आप बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तभी वो सीख पाएंगे आपसे जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो रवि जी, खास तौर पर अगर साइंस की बात करें तो एक शिक्षक के लिए केवल विषय का ज्ञान होना काफी है या विद्यार्थियों को समझना भी उतना ही जरूरी है?
0: देखिए, ज्ञान तो मेरे ख्याल से जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है सबको ही लगभग बराबर ही होगा ज्ञान। तो ज्ञान की बात तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाना और पढ़ने में दोनों में बहुत फर्क है। जब आपने खुद पढ़ा तो आपने अपने लिए पढ़ा, जब आपको पढ़ाना है तो आपको देखना है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आप उसको ज्ञान देंगे तो ज्ञान तो कोई नहीं लेता, मैं सही बता रहा हूँ। तो बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, उसका ध्यान। और आजकल के दौर में जो आपको पता ही है कि आज जो दौर है ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, तो आजकल अगर बच्चे को आपने कैप्चर नहीं किया तो वो कहीं और चला जाएगा, सोच उसकी कहीं और चली जाएगी। तो बच्चों को क्लासरूम में बच्चों को समझना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मोमबत्ती और वो माचिस टेबल पे रखी है तो बच्चों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ाने के तरीके बदलने पड़ेंगे, जो आज की डिमांड है उसको करना पड़ेगा। नॉलेज से नहीं चलेगा, नॉलेज कोई नहीं सुनता।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बच्चों को कैप्चर करना बड़ा जरूरी है, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ बहुत जरूरी है। और आप बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, तो लैब ऑन व्हील्स के बारे में बात करते हैं, वो आप हमें बताएं कि लैब ऑन व्हील्स या लैब ऑन कार्ट, उसका आइडिया आपको कहां से आया, किस तरह से बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया?
0: एक्चुअल में ये आइडिया ऐसे आया कि हमारा स्कूल जो है मलोया कॉलोनी में, वो एक मिडिल स्कूल से अपग्रेड होके हाई स्कूल बना, क्योंकि कम्युनिटी की डिमांड थी। तो लैब उस तरह का हमारे पास डेवलप्ड लैब नहीं था, तो फिर मैं हर बार सोचता था कि क्या किया जाए। क्लासरूम में छोटी छोटी एक्टिविटीज तो ठीक है, पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके लिए एक लैब सेटअप जरूरी है। तो फिर सोचा कि बच्चे लैब तक नहीं जा पा रहे, तो क्या हुआ, क्यों ना लैब को बच्चों तक ले जाएं। तो एक रेडी होती है, एक इस तरह का कुछ कार्ड सा लेकर उसको डेवलप करके एक हमने लैब बना ली, जिसमें हमने एक सिंक भी रखा, क्योंकि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर पानी वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो हमने एक इस तरह का कुछ सेटअप बनाया, एक तो वो दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वही जो मैं कह रहा हूं ना बच्चे को कैप्चर करना। तो वो कार्ड जो है वो अपने आप में पहले तो वो कैप्चर करता है, और उसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तो वो हमने सारे उसके चैम्बर्स बनाए अलग अलग, और उसको बनाकर उसको एक लैब में कन्वर्ट कर दिया। वो लैब क्लासरूम तक जाती है, या जिस रूम में रखा है वहां पर भी बच्चे ला सकते हैं। तो वो लैब क्लासरूम तक जाती है, बच्चे तक पहुंचती है, और बच्चा वहां आके एक्सपेरिमेंट खुद करता है। तो मतलब अगर स्कूल में लैब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ वहीं क्यों, जहां पर लैब है वहां पर भी हो सकता है, क्योंकि लैब तो अब एक पीरियड चल रहा है, तो क्लासेस 3 है, ए बी सी सेक्शन है, सारे तो वहां नहीं जा पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जो सभी के लिए हो, तो वो लैब क्लासरूम में जा सकती है, लैब में जाने की अब जरूरत नहीं है।
1: आपने और भी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे आपने अपने स्कूल में डूम थिएटर बनवाया, तो ये डूम थिएटर बनाने का आइडिया आपको कहां से आया?
0: एक्चुअल में इसके पीछे भी एक कहानी है कि डिपार्टमेंट से ग्रांट आती थी साइंस सिटी कपूरथला लेके जाना, और एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहां से भी हम ग्रांट हर साल लेते थे। तो साइंस सिटी कपूरथला लेके जाते थे, वहां पर एक डूम थिएटर है काफी बड़ा, तो जब भी जाएं तो बच्चे कहते थे कि भाई ये सबसे अच्छा है। मुझे भी वही

0: सबसे अच्छा वही लगता था, वही पार्ट, वहाँ पर सब घूमने से बच्चे कहते थे यही दोबारा ले चलो। फिर स्कूल आते थे तो हर बार क्वेश्चन, सर अब कब जाएंगे? तो मुझे लगा ये बार बार जाना है जाना है, तो सोचा क्यों ना स्कूल में ही ऐसा बना ले। फिर इसके बारे में मैंने और टीचर से डिस्कस किया, अपने साथी अध्यापकों से, जैसे जसबीर सिंह है मेरे साथ टीचर है, तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर ऐसा आइडिया है तो ये करना चाहते हैं, तो कहते कोई नहीं हम आपके साथ हैं, आप प्लान करो भी क्या करना है। फिर हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए, काफी टाइम लगाया हमने, तो फिर प्रोजेक्शन करनी थी। अब वहां तो क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्शंस हो रही हैं, तो हमने बोला एक ही प्रोजेक्शन से चल जाएगा। फिर करते करते हमने प्रोजेक्शन करी, प्रोजेक्शन तो अच्छी हो रही थी। एक हमने हाफ डोम मिरर लिया, आपने देखा होगा वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ऑफिसेस में लगता है, हाफ डोम टाइप मिरर होता है, तो विजुअल ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमने लिया, उससे हमने प्रोजेक्शन की, तो राउंड प्रोजेक्शन तो हो गई। फिर था कि हमें कैसे कर्व शेप दे, तो हमने वहाँ जो रूम बनाया है, पहले तो एक शेड बना लिया है बाहर से टिन का, अंदर से फिर उसको शेप दी अखबार के कागजों को चिपका चिपका के ऊपर, अखबारें थी हमारे पास लाइब्रेरी में, तो हमने वो लेके एक मेश वायर की जो तार आती है जिसपे कपड़े टांगते हैं, उससे पूरा वो जैसे पीओपी करते हैं ना, पीओपी का हमें बाद में आइडिया है, उस समय तो मैं यही था कि अखबारें चिपकाए जाओ, चिपकाते रहे जबकि वो पूरा डोम नहीं बन गया। फिर उसके ऊपर हमने एक पीवीसी शीट आती है जो वाटर प्रूफिंग के लिए होती है, हमें ये था कि व्हाइट हो ताकि प्रोजेक्शन सबसे अच्छा, फिर वो शीट्स लगाई और करते करते वो बन गया और प्रोजेक्शन की और सक्सेसफुल हो गए। और ये भी मैं बता दूं कि जो इसमें खर्चा हमने न के बराबर किया, और जो फर्श है, फर्श में हम टीचर्स ने मिलके खुद मसाला तैयार किया, वो बनाया, उसका फर्श डाला, ये सारा काम मेरे साथी अध्यापकों ने मिलके किया, फिर ये तैयार हो गया और अब चंडीगढ़ के और भी स्कूलों में चल रहा है।
1: बिल्कुल, आप सब टीचर्स की जो डेडिकेशन है, काम करने की भावना जो है, कर्मनिष्ठा जो है, उसको आकाशवाणी चंडीगढ़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत सलाम है। जिस तरह से आपने बताया कि सब टीचर्स ने मिलकर मसाला तैयार किया और आपकी मेहनत रंग लाई और डूम थिएटर आप तैयार कर पाए। रवि जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहां पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: तो लहरा दो सॉन्ग जो है, भारत का परचम हमेशा लहरता रहे, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, वो चला देंगे तो काफी अच्छा रहेगा।
1: जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, आइए सुनते हैं। अपना

गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रवि जायसवाल, जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मलोया कॉलोनी चंडीगढ़ में साइंस टीचर

0: में काम कर रहे हैं। रवि जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि किस तरह से आपने डूम थिएटर जो है वो तैयार किया और तमाम चुनौतियों के बावजूद आप सब टीचर्स ने मिलकर वो डूम थिएटर तैयार किया, तो आप हमें ये बताएं कि अगर मलोया कॉलोनी की हम लोग बात करें तो मलोया कॉलोनी के स्कूल में पढ़ाते हुए आपको ऐसे कौन से अनुभव हुए जिन्हें आप अपने शिक्षक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं?
1: देखिए, मलोया कॉलोनी जो है वो एक रिहैबिलिटेशन कॉलोनी है, तो चैलेंजेस तो हैं, पर मैं एक मानता हूँ इस बात को कि काम करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो गरीब तबके से आते हैं, और शायद मुझे लगता है कि उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है टीचर्स की, ताकि वो भी लाइफ में आगे सक्सेसफुल हों, जैसे हम आज टीचर बने वो भी फ्यूचर में जाके बने। तो कुछ बच्चों ने तो राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां पाई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी हर साल NCERT जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, तो 2014 से लेकर अभी तक हर साल हम राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, और हमारे स्कूल के बच्चे हर बार स्टेट लेवल पर उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। 6 बार हमने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है, जो NCERT एक एग्जीबिशन कराता है उसमें 6 बार ओवरऑल ट्रॉफी ली है, जो एक पेरिफेरी के स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे बच्चे कैपेबल हैं, ये सबूत है इस चीज का कि वो कैपेबल हैं, और गवर्नमेंट जो मॉडल स्कूल हैं, अदर स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूल को पूरी हम टक्कर देते हैं और वहाँ जीत के लाते हैं उनके पास से वो ट्रॉफीज। तो मतलब ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हमारे स्कूल का एक जो बच्चा है वो सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ और जापान गया जून 2025 में, और जो बच्चा है वो भी उसी तबके से आता है जो मैंने आपको बताया कि मलोया कॉलोनी में। तो ये बच्चे वो डिजर्व करते हैं, बस एक अध्यापक है उसका काम ही यही है कि उसको बच्चे में वो टैलेंट खोजना है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो मेरा काम यही रहता है कि मैं वो टैलेंट ढूंढता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको पूरा मौका मिले। शायद जो मौका मुझे मिला होता या और बच्चे जो इससे वंचित रह गए, तो मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चा डिजर्व करता है उसको मौका जरूर मिले।
0: जी बिल्कुल, आपकी यही सोच है जिसके कारण भारत ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो आपका नाम रोशन कर रहे हैं, स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, चंडीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, और भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो पढ़ाई के एक्सपीरियंस के दौरान क्या कोई ऐसा विद्यार्थी या विद्यार्थियों का समूह ऐसा है जिसकी प्रगति ने आपको एक शिक्षक के रूप में विशेष रूप से प्रभावित किया?
1: बहुत सारे बच्चे हैं, पर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि हमारे स्कूल का एक बच्चा जो है वो बच्चा पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहता था कि मुझे किसी लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ना, तो किसी तरह से उसको वहां पर उसकी मदद की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तक तो पहुंच गया, पर वहां आना जाने का खर्चा। तो बच्चे ऐसे हैं कि प्रॉब्लम में रहते हैं, पर अगर जैसे कि मैं उसकी क्या खास मदद कर पाऊंगा, पर कुछ जो भी कर सकते हैं तो मैं कहना चाहूंगा सभी अध्यापकों से कि कुछ ना कुछ बच्चों की मदद जरूर करें। तो वो बच्चा आज वो PhD कर रहा है, तो जब मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना था उससे 2 दिन पहले, जब अनाउंस हुआ ये, तो उससे 2 दिन पहले वो बच्चा आके अपना लेटर लेके आता है मेरे पास कि सर देखो मुझे ये स्टाइपेंड मिलने लगा है और इतना मेरा एरियर बन गया है, और मैं अब आपके पास पहले आता था कि सर मेरी मदद करो, तो आज देखो सर मैं खुद से कर रहा हूँ और गेस्ट लेक्चरर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ। तो सुन के गर्व होता है, और ऐसे बच्चे प्रेरणा देते हैं कि मैं कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए करता रहूँ, क्योंकि देखिए वो जो बच्चा है वो एक शो करता है कि अगर हम इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर पालेंगे, सक्सेसफुल होंगे और मुझे याद रखेंगे।
0: जी रवि जी, क्योंकि आज का युग जो है वो डिजिटल युग है, विद्यार्थी इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में एक टीचर की भूमिका किस तरह से बदल रही है?
1: अब टीचर भी वैसे टेक्निकल हो गए हैं, हम लोग भी, हमने भी YouTube पे चैनल बनाने शुरू कर दिए ताकि बच्चे अगर देखना है तो वो गाइडेड प्रोग्राम देखें, और चंडीगढ़ का जो DTH चैनल है वहाँ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है आजकल, तो वहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो बच्चों के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे जो है 5-5 मिनट की रील देखते हैं और रील को स्क्रॉल करते रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा इंटरेक्टिव कंटेंट बने, वो हम कोशिश कर रहे हैं। हर टीचर मेरे को लगता है कि अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है, बच्चों को दिखा रहा है, घर पे ही काम दे रहे हैं, तो टीचर भी टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनके लिए करने की कोशिश हम कर रहे हैं।
0: जी, बहुत से माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बच्चे को हम लोग ट्यूशन लगा दें या ट्यूशन के जरिए बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि स्कूल में आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ट्यूशन हर स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है, या खुद से अगर वो स्कूल में ही अच्छी तरह से पढ़ ले और उसके बाद घर जाके वही दोहरा ले तो वो अच्छा एक स्टूडेंट बन सकता है?
1: देखिए, इसमें ये कहूंगा कि अगर बच्चा क्लासरूम में ही अच्छे से पढ़ ले और जो टीचर ने

0: ताया है उस तरीके से वो घर जाके डेली पढ़े तो मेरे ख्याल से ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लासरूम में पूरी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे के पास, वो आता है अपनी प्रॉब्लम लेके। और कोई ऐसा टीचर नहीं होगा मेरे ख्याल से जो हेल्प नहीं करेगा, अगर कोई पूछ रहा है दो बार तीन बार वो बताएगा। लेकिन अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जो अब ऐसे ट्यूशन के लिए जाते हैं, पर मैं कहता हूँ कि अगर क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा जाए तो शायद ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरा तो ये मानना है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनको जरूरत पड़ती है, जैसे या तो पीछे रह गए, अगर ट्यूशन पढ़नी है तो अपने भाई बहन बड़े भाई बहन से सीखिए
1: जी,
0: वही तो। स्कूल में भी अब वैसे तो हमारा प्रोग्राम चलता है कि हम एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हैं बच्चों को, 10th क्लास की हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है, उसके लिए लड़ाई होती है आपस में टीचर्स की कि ये एक्स्ट्रा क्लास मैं लूंगा, ये एक्स्ट्रा क्लास मैं लूंगा। तो स्कूल में ये चलता है, आप कहीं भी स्कूल में जाएंगे वो बोलेंगे 10th की एक्स्ट्रा क्लास तो मैं लूंगा, क्योंकि बोर्ड का होता है। तो टीचर पूरी कोशिश करते हैं हम लोग, तो ट्यूशन की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ती
1: जी। रवि जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर आपकी पसंद का एक और गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: आशाएं इकबाल,
1: ये भी बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रवि जायसवाल, जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए जा चुके हैं और आजकल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मलोया कॉलोनी चंडीगढ़ में साइंस टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। रवि जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप कैसे कैसे प्रयोग करते हैं अपनी क्लासरूम में ताकि बच्चे आपके साथ जुड़े रहें, आपकी हर बात सुने और वो आगे चल के अच्छे नागरिक बने और देश के हित में काम कर सकें, आपको राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो इसके बाद किस तरह से आप महसूस करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी और कितनी बढ़ गई है?
1: अवार्ड लेने के बाद तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जैसे प्रोजेक्ट हमारे अभी अक्टूबर मंथ में हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं साइंस एग्जीबिशन के लिए, तो अभी भी मैं पूरी तैयारी वैसे ही कर रहा हूँ जैसे पहले कर रहा था। अब थोड़ा और प्रेशर बढ़ गया मुझ पर कि अगर अब नहीं करूंगा तो बोलेंगे कि पहले तो करते थे अब नहीं करते थे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो बच्चे भी सोचते हैं कि सर करेंगे, और तैयारियां अभी भी मैं करता हूं। और प्रोजेक्ट बनाने का मेरा एक कारण ये भी है कि मैंने ये देखा कि जितने बच्चे ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे किस लेवल के हो, चाहे पढ़ाई में बहुत अच्छे, एक तो होता है ना कि इंटेलेक्चुअली आप इतने अच्छे हैं, आपका ब्रेन वैसे तो सभी का बराबर ही होता है लेकिन कुछ का ध्यान केंद्रित होता है और पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हीं के लिए नहीं बल्कि जो दूसरे बच्चे जब ये करते कॉन्फिडेंस आ जाता है, काम करना सीख जाते हैं। एक आधा बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इतना अच्छा कर रहे तो अपना काम करने लग गए इलेक्ट्रॉनिक्स का, अपना पर्सनल तो रोजगार।

0: प्यार भी इससे जनरेट होता है और बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और आगे बढ़ चढ़कर और पढ़ाई में फोकस हो जाता है। अब एक बच्चा मेरा दिलरेश नाम है उसका, अब वो CSIO से इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो बच्चा पढ़ाई में शायद इतना तेज नहीं रहा होगा पर वो प्रोजेक्ट बनाने में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो गया साइंस में, फिर प्रोजेक्ट बनाता है, नेशनल भी जाया वो एक दो बार। जब वो 10th में था सर कहता है मैंने उसकी तैयारी करनी है तो मुझे बताओ कैसे करनी है। मैंने बोला कि बेटा कि कैसे करेंगे, टाइम कब होगा, तो मैं यहाँ पे करा दूँ। तो फिर कहता मैं सर आपके घर आऊंगा, तो मैंने बोला बेटा आ जाओ। फिर एक दो दिन वो साइकिल पे आया, मैंने कहा इतनी दूर आ रहे हो, फिर अपने साथ ले गया उसको कुछ दिन गाड़ी में, फिर उन्होंने कैब कर दूंगा तो जब वापस छोड़ दूंगा। तो बच्चा करते करते देखिए जो बच्चा कम भी है वो भी एडमिशन लेके अब वहां से इंजीनियरिंग कर रहा है वो। तो अगर बच्चे के लिए किया जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे अच्छा करते हैं।
1: जी, एक सवाल जो मन में आ रहा है कि क्योंकि आज का जो युग है बहुत ही फास्ट पेस है, इसमें भाग दौड़ की जिंदगी है, तो ऐसे में एक आदर्श शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो क्या होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, चाहे वो अनुशासन हो या उनमें आत्मविश्वास जो है वो विकसित करना हो, किस तरह से एक आदर्श शिक्षक ओवरऑल डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकता है।
0: देखिए टीचर को सबसे पहले खुद डिसिप्लिन होना होगा, कुछ टाइम से करना होगा, और दूसरा यह है कि ईमानदारी। अगर ईमानदारी का मतलब है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको सही से निभा रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, अगर आप अपने पेशे के लिए अपने काम के लिए चाहे कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। और आप जब ईमानदारी से क्लास में पढ़ाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि क्लासरूम में डिस्टरबेंस करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, पीछे से बोलते हैं, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब आप अच्छे से ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं तो बच्चे भी देखते हैं कि हाँ कि सर तो पूरा एक आधा दिन करेगा, बाद में वो देख लेगा कि सर तो पूरे वो जोर लगाते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी देख लेता हूँ क्या करा रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को पास होते देखा कि खुद को भी शायद एक बार उम्मीद हो जाती थी कि ये पास होने वाला नहीं, बट वो भी पास हो गए। अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो बच्चे समझते हैं।
1: जी,
0: तो यही है कि हर टीचर जो है अपने काम को ईमानदारी से करे, दिल से करे, जो काम मिलता है उसको दिल से करे।
1: रवि जी, क्योंकि आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप सभी सुनने वालों को, खास तौर पर जो युवा शिक्षक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया और सार्थक करना चाहते हैं?
0: मैं फिर से वही कहूंगा कि अपने काम को अच्छे से करिए और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच रखिए, बच्चे के बारे में सोचिए। हमें अब जॉब मिली है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अब ईमानदारी से उन बच्चों के लिए काम करें। अवार्ड्स तो मेरे ख्याल से सेकेंडरी हैं, अवार्ड्स अपने आप मिल जाते हैं, एप्रिसिएशन अपने आप मिलेगी अगर आप ईमानदारी। सोचा नहीं था कि मुझे ये स्टेट अवार्ड मिलेगा या राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिलेगा या वो प्रधानमंत्री जी से जो मिलना है वो अनुभव मिलेगा, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में, ये सोच के कोई नहीं करता। पर एक चीज मैंने की कि जो काम मुझे मिला उसको मैंने ईमानदारी से किया। तो फिर से वही कहूंगा कि बच्चों के बारे में सोचिए, ईमानदारी से काम करिए, तो आपके बच्चे भी सफल होंगे और इन द एंड आप भी सफल होंगे।
1: जी रवि जी, एक बार फिर आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 मिलने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक, हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे श्री रवि जायसवाल, जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए जा चुके हैं और आजकल ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मलोया कॉलोनी चंडीगढ़ में साइंस टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमन भगत। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 बजन वाले ने हुन तो कुछ ही पलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार रिले करांगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जाँच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
1: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
3: श्रोते हुने गैर फिल्मी गीत असी तुहानू सुनवा रही हां आदर्श राव दी आवाज़ च, संगीत भी आदर्श राव दा।

0: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
0: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
2: श्रोते हुने गैर फिल्मी गीत असी तुहानू सुनवा रही हां आदर्श राव दी आवाज़ च, संगीत भी आदर्श राव दा।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के 50,46,000 से अधिक विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 1634,27,00,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत और

0: नवीनीकरण के लिए 21 जिलों के लिए 77 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारी सड़क ऐप पर सड़कों की मरम्मत से जुड़ी शिकायतों का समाधान 10 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के गांवों के अटल पुस्तकालयों के लिए पुस्तक सेतु पोर्टल जारी किया और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने आज से 12 अक्टूबर तक हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आज विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के 4 लाभार्थियों के हाथों से प्रदेश के 50,46,624 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1634 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित करवाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा जरूरतमंद वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी और बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खातों में मिले। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के 10,10,000 लाभार्थियों के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है।
1: आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त आज जारी की है, जिसे मिलाकर के 12 किस्तें हमने जारी की हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही थी कि लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को 2100 रुपया हम देंगे, 2,466 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि उनके खातों में हमने पहुंचा दी। ये सरकार का कमिटमेंट होता है, आदरणीय मोदी जी की ये गारंटी है, उसकी गारंटी देश के विकास की भी है, देश के सम्मान की भी है।
0: इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,
1: हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक घोषणा की थी कि इसका दूसरा चरण हम शुरू करेंगे और इस योजना का दायरा हमने बढ़ाने की बात कही थी कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन बहनों को भी इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। मुझे खुशी है कि हमने 17 सितंबर को दूसरा चरण शुरू किया और उसके तहत टिल डेट 10 तारीख तक 2,57,147 बहनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन चल रहा है।
0: उन्होंने कहा कि पंजीकृत लाभार्थियों को नवंबर माह में लाभ राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35,13,295 लाभार्थियों के खातों में 1,131 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है। इसी तरह हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर भरवाने वाली 5,14,000 बहनों के बैंक खातों में अगस्त माह की 20 करोड़ 39 लाख रुपए की सब्सिडी हस्तांतरित की गई, जबकि दयालु योजना के तहत 4,222 परिवारों को 158 करोड़ 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भिजवाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूल गोभी उत्पादक 3,384 किसानों के खातों में 34 करोड़ 79 लाख रुपए की भावांतर भरपाई की राशि डाली गई।
2: आज मेरे किसान को अपनी सब्जी की फसल, चाहे आलू की हो, गोभी हो, अगर मार्केट में उसको कम दाम मिलता है तो बहाने की जरूरत नहीं पड़े, आज उसको कहीं छत पर डालने की जरूरत नहीं पड़े। 3,384 किसानों को 34 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि आज जारी की, जिसमें आलू की फसल के 34 करोड़ 76 लाख रुपए उनको दिए, फूल गोभी के 20 किसानों को 2,47,000 रुपए की राशि जारी की।
0: उन्होंने बताया कि आज की राशि को मिलाकर अब तक 49,148 किसानों को 281 करोड़ 74 लाख रुपए की भावांतर भरपाई का पैसा जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 21 जिलों में 1,723 कार्यों हेतु 77 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि जारी की है। आज चंडीगढ़ में उन्होंने बताया कि इनमें से 1,555 मांगे क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से तथा 169 मांगे ग्रामीणों द्वारा सीधे जनसंवाद पोर्टल पर उठाई गई थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2,930 कार्यों के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास

0: के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपनी चुनावी हार की भरपाई के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे अपने विरोध प्रदर्शनों के जरिए पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि देश लोकतंत्र और संसद के लिए चुने गए लोगों की जवाबदेही से चलेगा। उन्होंने सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारी सड़क ऐप पर सड़कों की मरम्मत और निर्माण से जुड़ी शिकायतों का समाधान 10 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में मारी सड़क ऐप और विभिन्न विभागों के अधीन सड़कों की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतें लंबित न रहें और संबंधित अधिकारी समय पर काम पूरा करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने सड़क निर्माण में टाइलों के बजाय आरसीसी या तारकोल का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सहित सभी विभागों की सड़कें लोक निर्माण विभाग के तय गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाने की हिदायत भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के गांवों के अटल पुस्तकालयों के लिए पुस्तक सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 996 अटल पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। जल्द ही 650 और पुस्तकालय खोले जाएंगे, जिनमें से 500 नए पुस्तकालय 25 दिसंबर तक खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पुस्तकालयों को पुस्तक सेतु पोर्टल से जोड़ा गया है। पुस्तक सेतु पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गांव के अटल पुस्तकालय को निःशुल्क पुस्तकें दान कर सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अटल पुस्तकालय में फर्नीचर, पुस्तकों का प्रारंभिक सेट तथा भारत नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को गांव में ही बेहतर अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचर ने कहा कि आज रात से हरियाणा में बारिश होने की संभावना है।
2: अभी पश्चिमी विक्षोभ लगातार अगले 5 और 6 दिनों के अंदर 2 और 3 पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना भी बन रही है। रात्रि से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 10 अक्टूबर से लेकर 12 तक हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हवाओं गरज चमक के साथ होने की संभावना है और 13 अक्टूबर को भी एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना।
0: श्री खीचर ने किसानों को सलाह दी कि वे फसल को भीगने से बचाने का प्रबंध करें।
2: किसान भाइयों को यही सलाह है कि अगेती धान की फसल को मंडी में ले जाते समय थोड़ा उसे सुखा कर ले जाएं और मंडी में ले जाते समय तिरपाल आदि का प्रबंध साथ रखें। नरमा कपास की चुनाई सूर्य निकलने के बाद में करें, सुबह ओस आ जाती है, इसके कारण क्वालिटी और क्वांटिटी पर प्रभाव न पड़े।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के 50,46,000 से अधिक विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 1634,27,00,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 21 जिलों के लिए 77,06,00,000 रुपए की राशि जारी की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोतियों, जितेंद्र शादी तरसी रचना सी बाबू सिंह मान दी, हरभजन मान दे गाए इस गीत तो बाद रुक कर रहे हैं गुरनाम भुल्लर दे गीत वाल। संगीतकार ने लाडी गिल।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट मकान पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से
1: दुकान बिजनेस स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो प्रवेश सूचना टेंडर नोटिस स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846
1: कम खर्च बड़ी पहुंच
0: आकाशवाणी चंडीगढ़
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते इस गीत दा संगीत तैयार कीता सुरिंदर सोडी ते जवाहर वट्टल ने गीत नु निभाया हंसराज हंस ने

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो

0: खरीदारी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: विशेष जयमाला इस प्रोग्राम नहीं करो, बस थोड़ा जो इंतजार, ये प्रोग्राम असि विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किमे फैलदा है?
2: एचआईवी
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किमे संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना।
1: मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यूं तो हम हर रोज रिकॉर्डिंग्स करते हैं, स्टेज पर शोज करते हैं, देश में भी और विदेशों में भी। कभी आपके सामने सरहदों पर आपका मनोरंजन करने का मौका मिले, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। देखे कब पूरी होती है। फिलहाल आज जयमाला का प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, जिसमें आपसे बातचीत भी करूंगी और अपनी पसंद के गाने भी सुनवाऊंगी। यकीन मानिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आइए प्रोग्राम शुरू करें। फौजी भाइयों, आप दूर सरहदों पर बैठे अपनी पत्नी, अपनी महबूबा के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं ना?

फौजी भाइयों, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए एक गाना करना था। प्रोड्यूसर ने कहा कि आप लता जी को कहिए कि वो गाना गाए।

जी भाइयों, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए एक गाना करना था। प्रोड्यूसर ने कहा कि आप लता जी को कहिए कि वो गाना गाए। मैं बहुत घबरा गई, मुझे डर लग रहा था कि प्रोड्यूसर ने तो कह दिया कि तुम फोन कर लो और उनसे पूछ लो, मगर लता दीदी गाएंगी या नहीं। मैंने बड़े डरते डरते उन्हें फोन किया तो पता चला घर पे नहीं थी। मैं अपने घर बैठी हुई थी और थोड़ी देर के बाद एक फोन आया और मेरे पड़ोस में फोन था, तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी का फोन है। मैं गई, भागती भागती गई और वहां जब मैंने फोन उठाया तो दीदी ने पूछा, उषा तुमने मुझे फोन किया था, क्या काम है? मैंने कहा, दीदी मेरी एक फिल्म है और मैं चाहती हूँ कि आप गाना गाएं, क्या आप गाना गाएंगी? और उनका जवाब था,

पहुंची भाइयों, मेरी पहली फिल्म का नाम था दिल देके देखो। उसके लिए आशीष जी और रफी साहब मेरा एक गाना गा रहे थे और गाने के बीच में एक जगह आती थी कि कुछ तो बोलो जी, कुछ अलग तरीके से बोलना था। तो हमारी जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जब मैं गाना करते समय देख सकती थी और आर्टिस्ट मुझे देख सकते थे, तो मैंने देखा कि शीशे में से आशीष जी मुझे देख रही हैं और पता नहीं उन्हें क्या लगा कि उन्होंने कहा कि कट कट, मतलब कि गाना रोक दो। जब गाना रुक गया तो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि उषा क्या बात है, कुछ तुम खुश नजर नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं दीदी, बहुत अच्छा गाना हो रहा है। तो रफी साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक नहीं गा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं रफी साहब, बहुत अच्छा हो रहा है। तो बोले नहीं, कुछ बात है जो तुम छुपा रही और कहना नहीं चाहती। तो मैंने कहा नहीं, वो क्या है ना कि आशा दीदी जैसे गा रही ना, तो आप भी वैसा बोली। तो रवि साहब ने कहा कि तो के जो तुमने रट लाई पहले कह रही थी कि तो ऐसे चाहिए, तो मैं तो ऐसे बोलता। कहे कि फिर से बता तो कैसे करना है। तो बोलो जी, हाँ अच्छा मैं ऐसे गाऊंगा। और इस छोटी सी बात को लेके वहाँ जितने म्यूजिशियंस थे और सब थे, रफी साहब आशा दी सब लोग हंस पड़े। बोले मैं ऐसे तो गा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा। और क्या था ना, नई नई म्यूजिक डायरेक्टर बन रही थी तो घबराहट के मारे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ क्या नहीं। कुछ भी कहिए, रफी साहब जितने ही बड़े कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी। रफी साहब जब कहीं स्टेज शो करने जाते थे देश में या विदेश में, रफी साहब प्रोग्राम के आखिर में ये गाना सुनाया करते थे और ये कह करके, भाइयों और बहनों आज के इस प्रोग्राम के बाद आप लोगों से अब मुलाकात हो या ना हो।

फौजी भाइयों, हर कलाकार को किसी ना किसी से प्रेरणा जरूर मिलती है। मुझे जिनसे प्रेरणा मिली और अभी भी मिलती है, वो मेरे मन पसंद संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। उनके संगीत का मुझ पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। मेरे ख्याल से एक यही संगीतकार हैं जिन्होंने जितनी फिल्मों में म्यूजिक दिया है वो सब हिट म्यूजिक रहे। इनके गाने के साथ इनका जो म्यूजिक होता है, जिसे हम इंटरल्यूड म्यूजिक कहते हैं, वो आम लोग भी गा सकते हैं। जैसे कि उनके गाना है आवारा हूँ, होठों पे सच्चाई रहती है, दोस्त दोस्त ना रहा। इन सब के जो गायक थे वो थे मुकेश साहब। मुकेश जी अपने कलर के, अपने रंग के एक अलग ही गायक थे। मैं हमेशा उनकी फैन रही हूँ और फैन रहूँगी। मेरे उन्होंने बहुत से गाने गाए थे जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुए हैं। उनमें से एक जो मैं गाना आपको सुनाती हूँ वो ये है।

जी भाइयों, एक दिन मैं गाना कंपोज कर रही थी जिसके बोल थे, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ आप लोगों का ख्याल आया। कितनी सच बात है, आप लोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते, बर्फीली सरहदों पर तपते हुए रेगिस्तान में तैनात अपने देश की, अपनी धरती माता की और हम सबकी रक्षा के लिए आप जान की परवाह ना करते हुए कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के काम आए। लीजिए सुनिए, मन्ना दा ने इस गाने को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया है।

0: क्या दिए।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
3: सुबह जलाओ शाम जलाओ
4: देव दर्शन धूप।
3: सुबह जलाओ शाम जलाओ
4: देव दर्शन धूप।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: मारेंगे। उन्होंने मेरी तरफ अचानक देखा और कहा कि उषा तू कुछ उदास नजर आ रही है, क्या बात है? मैंने कहा दीदी जरा मूड ठीक नहीं है। क्या बात है मुझे तो बता दीदी, कुछ बात ऐसी है, पता नहीं क्या, ये जो लोग है ना कुछ कह देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अरे लोगों की बातों की तू क्या परवाह करती है? मैंने कहा नहीं दीदी, लोग बाहर के हो तो अलग बात है, जब अपने कुछ बोलते हैं ना तो बात कुछ अलग ही चुभती है। दीदी ने बोला कमाल करी उषा, तेरा गाना क्या कह रहा है और तू क्या सोच रही है? अरे सुन, बेहतर यही है कि तू अपने गाने पर ध्यान दे और बोलों को सुन। और वाकई फौजी भाइयों, मेरा सचमुच मूड ठीक हो गया।
1: अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक दिन मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंची और दीदी को फोन किया कि आप 11 बजे तक आ जाना। मैंने देखा कि दीदी आज 10 बजे चली आ रही। मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि तेरा गाना था और मैं आज जरा जल्दी सुबह उठ गई तो तैयार हो गई थी। मैंने सोचा चलो जरा जल्दी पहुंच जाओ और थोड़ी देर गप्पे गप्पे

फौजी भाइयों, एक बहुत बड़े गायक कलाकार के बारे में ये मशहूर है कि बहुत मुड़ी है। मेरा इशारा मेरे ख्याल से आप समझेंगे कि मैं उनका नाम बताऊं। हाँ जी, हाँ, किशोर कुमार जी की तरफ है। मगर मेरे साथ तो कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। वो मेरी रिकॉर्डिंग पर हमेशा समय पर आए हैं। जो कोई भी डेट मांगे, जब कभी भी मांगे डेट, उन्होंने राजी खुशी होकर डेट दी है। और मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। एक दिन मैं सुबह सुबह किशोरदा के घर पहुंची तो किशोरदा ने मुझे बुलाया ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए। कहा कि क्या बात है उषा, आज तुम सुबह सुबह कैसे यहाँ आ गई? मैंने कहा दादा, क्या है ना कि गाना है वो, मैं चाहती हूँ आप गाएं, क्योंकि मैंने जो गाना कंपोज किया है वो सिर्फ

0: आपको ध्यान में रख के किया है और ये गाना आप ही अच्छा गा सकते हैं। अरे अच्छा, मैं समझ गया, बजट के मामला तो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ दादा, वो कुछ प्रोड्यूसर बेचारा नया है तो और थोड़ा बजट का। अरे कमाल की लड़की है, मूर्ख लड़की, तू इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ तक आई मेरे घर तक, टेलीफोन पर कह दिया होता मैं आ जाता रिकॉर्डिंग पर। एक बात बताऊँ फौजी भाई, किशोर कुमार जी जितने अच्छे गायक हैं उतने अच्छे ही एक्टर हैं, उतने अच्छे ही डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। अब जो मैं गाना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये गाना किशोर कुमार जी ने खुद ने कंपोज किया है, अपनी फिल्म में अपने ऊपर ही पिक्चराइज किया है। दीजिए सुनिए।
1: हाँ।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी ले टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना।

सीना धरती का हरियाली जो लाते हैं वो इनके हाथ हैं, जो पर्वतों को काट कर रास्ते बनाते हैं वो इनके

0: मिलों में कारखानों में मशीनें जो चलाते हैं इनके हाथ हैं।
1: फौजी भाइयों, दक्षिण भारत के एक मशहूर गायक जिन्होंने सबसे पहले बम्बई की हिंदी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की, जी हाँ, यशोदा जी के बारे में कहना चाह रही थी। उन्होंने मेरे साथ पहला गाना फिल्म दादा के लिए गाया था, जिसके बोलते दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। एक बार मेरी रिकॉर्डिंग के दिन एक मजेदार किस्सा हुआ। फिल्म का नाम था साजन बिना स्वागन और मैं अपने म्यूजिशियनों के साथ अंदर थिएटर में रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि क्या होता है कि गाने की रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ अपनी घड़ी की तरफ ख्याल ही नहीं रहता। इतने मेरे असिस्टेंट ने कहा कि उषा जी 4 बज गए और यशोदा जी अभी तक आए नहीं है। मैंने कहा अरे कमाल है, ये तो बड़े पंक्चुअल है, अपने टाइम पे आ जाते हैं। मैंने कहा चलो 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करते आ जाएंगे। 7 बज गए जी, पता चला कि यशोदा जी अभी तक तो आए नहीं, क्या उनकी खबर ही नहीं लगी कि वो कहाँ है। इतने मैंने देखा कि यशोदा जी कि कोई और है, देखा तो सच में वो भीगे हुए स्टूडियो में दाखिल हुए और आते ही बोले उषा जी आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं अपने घर से 3 घंटे हुए पहले निकला हूँ और अभी देखिए पहुंचा हूँ। मैंने कहा क्या आप इतने कैसे भीग गए, तो कहने लगे क्या बंदा बैठी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, आपको बाहर के हालत क्या है क्या पता लगी है, जरा खिड़की खोलकर बाहर तो देखिए। और मैंने खिड़की खोली तो देखा फौजी भाइयों सबकी कारें आधी आधी डूबी पानी में खड़ी हुई थी और बे इंतहा बारिश हो रही थी। शायद यशोदा जी तैर कर ऊपर तक भी पहुंचे थे, क्योंकि मेरे स्टूडियो जरा 5-6 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता है। फौजी भाई उसके बाद मैं इतनी हंस रही थी, मगर मैंने अपने आप को अपनी हंसी को छुपाते हुए मैं म्यूजिशियन की तरफ चली गई और इसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू की, क्योंकि देर से रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी तो सुबह की 4 बजे जाके ये गाना खत्म हुआ। हम सब स्टूडियो में चाय पीते रहे और गप्पे मारते रहे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था, हम लोग कोई भी अपने घर नहीं पहुंच सकता था। और फौजी भाइयों मजे की बात तो ये है कि जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था वो महीना सावन का था, गाने के बोल में भी सावन का नाम आता था और यहाँ तक कि प्रोड्यूसर का नाम भी सावन था। लीजिए आप लोग भी उस गाने को सुन लीजिए।

फौजी भाइयों, मैं आज जो कुछ भी हूँ इस कला के क्षेत्र में, इसमें मेरे माता पिता जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों के प्रोत्साहन से ही और मेरी खुद की मेहनत से मैं आज जो कुछ भी हूँ, यहाँ तक हूँ। मेरे पिताजी एक जमाने में बहुत अच्छे फिल्मी गीत लिखते थे और वो बहुत अच्छे शायर भी हैं। साथ में संगीत की तालीम मैंने अपने पापा से ही सीखी है। जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन से ही गाने का शौक देखकर मेरे पापा ने मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं आई थी फिल्मों में गायिका बनने और इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, मगर क्या है ना कि मुकद्दर वक्त की बात बड़ी अजीब है, बन गई संगीतकार। वैसे मैं गाने भी गाती रहती हूँ। अब जो गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो एक रागमाला है, यानी कई रागों पर आधारित एक कंपोजिशन है। बहुत पहले जब मैं अपने पापा से गाना सीखती थी, उनसे ही मैंने ये सीखा है। उसी रागमाला को फिल्म स्वीकार किया मैंने के लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है आप इस रागमाला को जरूर पसंद करेंगे। लीजिए सुनिए।

0: अच्छा तो फौजी भाइयों, घड़ी मेरी तरफ कुछ इशारा कर रही है और मुझे प्रोग्राम खत्म करना चाहिए। मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।
1: श्रोताओं, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना ने। आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ
0: ऐसी

0: जी गुरी दा संगीत सी गायकी सी बलराज दी श्रोते तुसी सुन रहे सी चोणवे पंजाबी गीत।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियों का वाचन। आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का दूसरा भाग। वाचन स्वर ममता सिंह का। अब तक आपने सुना, मैं विदेश लौटकर छोटा नागपुर के एक चंद्रवंशीय राजा के दरबार में

नौकरी करने लगा। अपनी झोली में रंग बिरंगे पत्थरों को भरे मैं कोठी को लौट रहा था, ये सोचकर कि अपने विज्ञान शाला में इनकी परीक्षा करूंगा। इसी समय मेरे सामने आकर एक बाधा खड़ी हो गई। उस निर्जन पथ के एक टीले पर वो कोमलांगी बैठी थी। उस पेड़ के तने से टिक कर वो मन लगा कर कुछ लिखे जा रही थी। उस बाला को भी मेरे खड़े होने का कुछ आभास सा हो गया। उसने लिखना बंद कर दिया। बाल्यावस्था में किन्हीं बसु महाशय का जो गीत मैंने सुना था और जिसे सुनकर भी भुला दिया था, न जाने क्यों ऐसा जान पड़ा कि उस राग की सहज संगिनी में इसी बंगाली लड़की के रूप की जो भूमिका व्यंजित है वो आज मेरी आंखों के समक्ष साकार हो उठी है। पता लग गया कि प्रतिदिन तीसरे प्रहर जब इसी मार्ग से काम से लौटा करता तो वो मुझे विशेष दृष्टि से देखा करती। मेरे विज्ञानी मन को ऐसा लगा कि वो किसी को पाने के लिए इतना कठोर व्रत कर रही है। भवतोष विलायत से लौटकर छपरे में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो गया है। विलायत जाने से पूर्व इन दोनों में यही समय रहते गंभीर प्रणय हो गया था, परंतु अब पद की नियुक्ति के बाद कोई विशेष विप्लव घट चुका है। असल बात क्या है इसकी तो जानकारी करने से ही पता लगेगा। विवाह संबंध निश्चित हो चुका था, प्रतीक्षा थी भवतोष के विलायत से लौटने की। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके जब वो भारत आया और यहाँ के किसी उच्च पदाधिकारी की कन्या से विवाह कर लिया, उसके इन कुकृत्य और लज्जा से क्षुब्ध होकर डॉक्टर साहब नौकरी को तिलांजलि देकर अपनी नातिन के साथ कहाँ चले गए इसका कुछ पता नहीं। कंचन की परिस्थिति का पूर्ण आभास हुआ। तभी दृढ़ संकल्प किया कि उसको लज्जा और अवसाद से मुक्त करूंगा। अब आगे। मेरा नाम नवीन माधव सेन गुप्त है। उसे सुनकर वृद्ध डॉक्टर का मुख उज्जवल हो उठा। बोले, आपको हमारे यहाँ चलना होगा। इसके लिए कहना न पड़ेगा दादू, ये तो पहले ही चलने के लिए मुंह धोए बैठे हैं। मैंने मन ही मन कहा, अनर्थ हो गया, कैसी शरारत की है इस कंचन ने। डॉक्टर साहब ने उत्साहित स्वर में कहा, आपको शायद देश और काल की, नहीं नहीं, मैं इन चीजों को कुछ भी नहीं समझता, मुझे समझाने में आपका समय ही बर्बाद होगा। समय? यहाँ समय का अभाव ही कहाँ है। अच्छा, आज भोजन हमारे यहाँ ही आप करें। मैं धन्यवाद करने ही जा रहा था कि कंचन बोल उठी, दादू, हर एक को न्योता देकर मुझे मुश्किल में डाल देते हो, भला इस जंगल में फिरंगी की दुकान कहाँ मिलेगी। ये विलायत के डिनर खाने वाली जाति से संबंधित इंसान है, व्यर्थ में अपनी नातिन को बदनाम करना चाहते हो आप। अच्छा तो बताइए, आपको कब सुविधा होगी, वृद्ध महाशय पूछ उठे। मेरी सुविधा तो कल ही हो सकती है, परंतु मैं कंचन देवी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अनुसंधान के लिए वनों में जाना पड़ता है। वहां जो कुछ भी प्रकृति की देन के द्वारा मिलता है उसे बटोर कर ले आता हूँ। दादू, इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मैंने सोचा, ये तो अजीब लड़की है, जो कहता हूँ उसी को जड़ से काट देती है। इस प्रकार वार्ता करते करते हम सब कंचन के मकान की ओर बढ़े चले जा रहे थे कि कंचन अचानक बोल उठी, अब आप अपने शिविर को लौट जाइए। अरे क्यों, मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को मकान तक छोड़ आऊं। बस बस बस, हम खुद ही चले जाएंगे। अस्त व्यस्त अवस्था में मकान को दिखाकर परिहास का केंद्र नहीं बनाना चाहती। विवश होकर मुझे विलग होना पड़ा। इसके उपरांत मैं अपने शिविर में लौट आया। अगले दिन तनिका के तट पर कंचन के साथ हमारी पिकनिक हुई। डॉक्टर साहब बालकों के समान मुझसे पूछ बैठे, नवीन, क्या तुम विवाहित हो? मैंने उस भावार्थ प्रश्न का तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, अभी तो अविवाहित हूँ। कंचन को किसी बात से छुटकारा नहीं। वो बोली, ये तो पहले से ही सुनने में आया है कि आप 36 साल के बच्चे हैं। इस अरसे में आपसे भी 5-7 बार कहा जा चुका है कि बेटा बहू लाना चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा इससे पहले मैं लोहे के संदूक में रुपए लाना चाहती।

हूँ। इसके बाद इस अरसे में आपका सब कुछ हो गया, केवल फांसी भर शेष थी। अंत में प्रांतीय सरकार का बड़ा पद जुट गया तो माँ ने फिर कहा, अब तो बेटा ब्याह करना ही होगा, मेरी जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं। और आपने कहा, मेरा जीवन और मेरा विज्ञान एक है, उसे मैं देश के लिए उत्सर्ग करूंगा, मैं अभी ब्याह नहीं करूंगा। विवश होकर फिर उन्होंने आंखों का पानी पोंछ कर चुप्पी साध ली। वो फिर बोली, हम लोगों के देश में आप लोग लड़कियों को जीवन संगीनी के रूप में पाते हैं, विश्व का जिससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु विदेश में जो लोग विज्ञान के तपस्वी हैं, उनको तो उपयुक्त तपस्विनी ही मिल जाती है, जैसे अध्यापक क्यूरी को सहधर्मिनी मादाम क्यूरी। तो क्या वैसी कोई आपको वहां रहते हुए नहीं मिली क्या? कंचन के कहते ही कैथरीन की बात याद आ गई, लंदन में रहते समय साथ ही काम किया था, यहां तक कि मेरी एक रिसर्च की पुस्तक में मेरे नाम के स

उत्सर्ग करूंगा, मैं अभी ब्याह नहीं करूंगा। विवश होकर फिर उन्होंने आंखों का पानी पोंछकर चुप्पी साध ली। वो फिर बोली, हम लोगों के देश में आप लोग लड़कियों को जीवन संगीनी के रूप में पाते हैं, विश्व का जिससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु विदेश में जो लोग विज्ञान के तपस्वी हैं, उनको तो उपयुक्त तपस्विनी ही मिल जाती है, जैसे अध्यापक क्यूरी को सहधर्मिनी मादाम क्यूरी। तो क्या वैसी कोई आपको वहां रहते हुए नहीं मिली क्या? कंचन के कहते ही कैथरीन की बात याद आ गई। लंदन में रहते समय साथ ही काम किया था, यहां तक कि मेरी एक रिसर्च की पुस्तक में मेरे नाम के साथ उसका नाम भी जड़ित था। बात माननी पड़ी। कंचन ने तत्काल ही पूछ लिया, वैसे उनके साथ आपने विवाह क्यों नहीं किया? वे क्या इसके लिए तैयार नहीं थी? उन्हीं की ओर से प्रस्ताव तो उठा था। तो फिर मेरा नाम भारतवर्ष का ठहरा इसीलिए। यानी स्नेह की सफलता आप जैसे साधकों की कामना की वस्तु नहीं, लड़कियों के जीवन का परम लक्ष्य व्यक्तिगत है और आप जैसे इंसानों का नैतिक है ना? इसका उत्तर मुझसे देते न बन पड़ा। मुझे चुप देखकर कंचन फिर बोली, बंगला साहित्य कतिपय आपने नहीं पढ़ा, उसमें यही बात दिखाई गई है कि लड़कियों का व्रत पुरुष को बांध रहा है और पुरुष का व्रत है उस बंधन को काट कर ऊपर लोक का मार्ग पकड़ना। कच भी देवयानी के अनुरोध की उपेक्षा कर निकल पड़ा था, आप माँ का अनुनय न मानकर चल पड़े हैं। एक ही बात हुई, नारी और पुरुष में चिरकाल से चला आने वाला हो, चाहे भले ही अबला क्रंदन होता रहे। कंचन फिर बोली, देवज्ञानी ने कच को क्या शाप दिया था? जानते हैं नवीन बाबू? नहीं, अपने ज्ञान साधक का फल आप स्वयं को न सोच सकेंगे, हाँ दूसरों को दान कर सकेंगे। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगती है, यदि ये शाप आज कोई विदेशी लोगों को देता तो वो बच जाता। विश्व की सामग्री को अपनी सामग्री के समान व्यवहार करने की वजह से ही यूरोप वाले लालच के द्वार पर मरते हैं। उस दिन जो बातें हुई वे केवल हास्य व्यंग्य ही नहीं थी, उनमें युद्ध की ओर संकेत था। कंचन के साथ अब मेरा संबंध सहज हो आया था। इस पर भी मैं कंचन के सम्मुख खड़े होकर उसकी चरम अभिलाषा की थाह पाने का कोई उपाय खोज नहीं पाया। हाँ, अवश्य एक दिन पिकनिक के समय ये सुयोग मिल गया। उस समय डॉक्टर साहब शिवालय के खंडहर की सीढ़ी पर बैठकर रसायन शास्त्र की कोई नई आई हुई पोथी पढ़ रहे थे। एक आबनूस के पेड़ की झाड़ी में बैठकर कंचन अचानक कह उठी, इस महाकाल के वन में एक अंत ही प्राण शक्ति है, उससे मैं भयग्रस्त हूँ। कंचन कहती गई, पुराने भवनों के दरार से लुक छिप कर पीपल का अंकुर निकलता है और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों से उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। ये भी वैसा ही है। दादू के साथ यही बात हो रही थी। दादू कह रहे थे, बस्ती से बहुत दिनों तक दूर रहने से प्रकृति के अभाव से मानव का चरित्र दुर्बल हो जाता है और आदमी प्राणी प्रकृति का असर प्रखर हो उठता है। मैंने उत्तर दिया, बताता हूँ, मेरी बात को भली भांति सोचकर देखिएगा। मेरा विचार ये है कि ऐसे अवसरों पर मानव का संग भीतर और बाहर से मिलना बहुत जरूरी है, जिसका प्रभाव मानव प्रकृति को पूर्ण कर सके। जब तक ये नहीं होगा तब तक अंध शक्ति से पराजित ही होना पड़ेगा। काश आप मामूली, हाँ हाँ हाँ कहिए कहिए, संकोच मत कीजिए नवीन बाबू, कंचन ने शीघ्रता से कहा। कंचन आप ये तो जानती ही हैं कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, इसलिए जो कहने जा रहा हूँ उसे व्यक्तिगत आसक्ति से रहित होकर ही कहूंगा। आपने एक दिन भवतोष को बहुत स्नेह से देखा था, बताइए हमें कि क्या आज भी उसे उसी प्रकार? समझ लीजिए नहीं करती। तो मैंने ही आपके मन को उधर से हटाया है, संभव हो सकता है, लेकिन आपने नहीं बल्कि इस अंधशक्ति ने भी। इसलिए मैं इस हटने को श्रद्धा की दृष्टि

जिसे नहीं देखती। ऐसा क्यों? दीर्घकाल के प्रयास से मानव चित्र शक्ति में अपने आदर्श की रचना करता है। प्राण शक्ति की अंधता उस आदर्श को तोड़ देती है। नवीन बाबू, आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वो उसी अंध शक्ति के आक्रमण का फल है। दीर्घकाल के प्रयास से मानव चित्र शक्ति में अपने आदर्श की रचना करता है। प्राण शक्ति की अंधता उस आदर्श को तोड़ देती है। आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वो उसी अंध शक्ति के आक्रमण का फल है। नारी होकर भी आप प्रेम पर ऐसा अपवाद मढ़ती हैं? नारी होने के कारण ही ऐसा कह रही हूँ। प्रेम का आदर्श हमारे लिए पूजा की सामग्री है, उसी को सतीत्व कहते हैं। सतीत्व एक आदर्श है। ये सामग्री वन की प्रकृति की नहीं है, मानवी की है। इस निर्जन में इतने दिनों से इसी आदर्श की तो पूजा कर रही थी मैं। सारे आघातों को सहन और धोखा खाने के बाद भी उसे बचा सकी तो मेरी पवित्रता भी नहीं जाएगी। क्या भवतोष के लिए अब भी श्रद्धा का स्थान है? नहीं, उसके पास जाना चाहती हो? नहीं, तो फिर क्या? कुछ भी नहीं। मैं आशय नहीं समझा। आप समझ भी नहीं सकेंगे। आपकी संपत्ति ज्ञान है, ज्ञान। उच्चतर शिखर पर भी वो इम्पर्सनल है। नारी संपत्ति हृदय की संपत्ति है, हृदय की। यदि उसका सब कुछ चला जाए, वो सब कुछ जो बाहरी है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, तब भी उस प्रेम में वो वस्तु बच रहती है जो कि इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल। अच्छा, चलिए, वाद विवाद में समय नष्ट न कीजिए, दुखी मत होइए। मुझे कुछ ही दिनों में खोज करने के अभिप्राय से अन्यत्र कहीं चला जाना होगा, किंतु फिर गए क्यों नहीं आपसे? तभी कंचन ने पुकारा, दादू, दादू। सुनो कहानी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को हवा महल कार्यक्रम में। वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

गीत अलका याग्निक अरिजीत सिंह की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल और संगीत एआर रहमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत, जिसे गाया है अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब शबरी और साथियों ने। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। ये गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से है।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
3: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
2: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
3: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
2: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कम्पोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए लेते एक छोटा सा विराम।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में यह गीत जो कि है फिल्म दिलवाले से। इसे गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। इसके साथ ही इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
3: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
2: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने

0: 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मित पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।

0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात PM जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
3: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
2: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
4: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
2: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग, सरकार

0: सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए। मैं

0: हम सुन रहे थे ये गीत सुहाना सफर फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए में ये गीत जो है फिल्म तेरे मेरे सपने से। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गोपाल दास नीरज के बोल हैं और संगीत दिया है सचिन देव वर्मन ने।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं अगला गीत मेरे अपने फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में।
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और

हम सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज में गुलजार के लिखे गीत को, जिसे संगीत दिया वसंत देसाई ने। फिल्म है गुड्डी।

हम सुन रहे थे ये गीत कल आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और कार्यक्रम आपके लिए समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए। नमस्कार।

0: ਵਈ ਮਨੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ
1: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
0: ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
1: ਐਚ ਆਈ ਵੀ
0: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਿਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
2: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ
3: का सपना हो नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम ऑटो पर्सनल पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन नियम और शर्तें लागू
4: गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए
5: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको आजा अब तो आजा आजा ये करना बहुत मुश्किल है इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को तब जाके ये आ, आ, आ होता है और एक दिन मैं ये आ, आ, आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या क्या हो गया आपकी तबीयत ठीक है ना तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर विविध भारती आपका जीवन संगीत

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई सज्जन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ डोंडीबा आई का ओए सरनल सिंह ओए सरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
2: अरे वाह, क्या करतूत है मेरी, जरा बताओ तो।
0: सुन

रेखा, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में एक दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादों।

0: घुम का चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया। चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा।

ये खूबसूरत शोला ऐसा चमका कि उसकी चमक के आगे सितारे भी शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और अलग रंग हमारे सामने आया जब हमने देखी उमराव जान।

0: जी हाँ, मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉट केक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

यूं तो रेखा ने तकरीबन सभी नायकों के साथ काम किया है, लेकिन रेखा की फिल्मी जोड़ियां रहीं जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ। पर उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल सिलसिला, सुहाग, राम बलराम और खून पसीना।

रेखा की फिल्में तो हिट रही ही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं। और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
0: वधेरे जानकारी ले टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: जिंदगी में उजाले तो बहुत होते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक अंधेरा ठहर जाता है। वो अंधेरा जो किसी की याद से रोशन भी होता है और उसी याद में हमें तन्हा भी कर देता है। वो सामने नहीं होते, फिर भी हर ख्याल में उनका चेहरा नजर आता है। उनकी खामोशी तक जैसे हमसे कोई गुफ्तगू करती है।

मोहब्बत में वफा निभाना तो हमने सीखा, मगर जफा करना ना आया। किसी की खातिर दिल को तड़पाना, किसी की आंखों में अश्क लाना हमारी फितरत नहीं। इश्क में शिकवे भी मिले, फासले भी आए, मगर दिल ने हर बार उसी शख्स की खैरियत मांगी।

इश्क वो नहीं जो महज लफ्जों में बयान हो जाए, इश्क तो वो है जो खामोशी में भी पूरी दास्तान कह जाए। वो मेरी मोहब्बत बनकर मेरी रूह में समाती गई, उसकी एक झलक को तरसती निगाहें, उसकी एक आवाज़ पे ठहरती धड़कनें। ये कैसी आरजू है, ये कैसी कैफियत है कि उसका नाम आते ही दिल को जैसे इबादत का एहसास होने लगा।

इश्क तो वो है जो खामोशी में भी पूरी दास्तान कह जाए। वो मेरी मोहब्बत बनकर मेरी रूह में समाती गई, उसकी एक झलक को तरसती निगाहें, उसकी एक आवाज़ पे ठहरती धड़कनें। ये कैसी आरजू है, ये कैसी कैफियत है कि उसका नाम आते ही दिल को जैसे इबादत का एहसास होने लगा।

अंतराल के बाद इस दीवाने की महफिल में हम और आप साथ साथ छाया गीत के सफर में। उसकी मोहब्बत क्या रंग लाई, उसे देखने की आरजू, उसे चाहने में खुशी, उसके साथ में जैसे पूरी कायनात मिल गई। उसे देखा तो लगा बहारों ने कोई ख्वाब देखा है, जैसे गुलिस्ता में अचानक किसी गुल ने मुस्कुराकर अपनी खुशबू बिखेर दी हो।

इश्क में आशिक की बेचैनी यही तो होती है, महबूब नजर से ओझल हो जाए तो दिल उसे हर गली, हर राह, हर फिजा में तलाश करने लगता है। यही तो मैंने भी किया, कभी हवाओं से, कभी घटाओं से, तो कभी चांद से पूछता, क्या तुमने उसे देखा है। नजर उसकी तलाश में भटकती रही और जब महबूब को एक नजर देख लिया तो मत पूछिए दिल कहाँ।

महबूब से मिलने की खुशी कभी अपना एक आलम है, लबों पर खामोशी, आंखों में ख्वाब और दिल में बेपनाह मोहब्बत।

जब हुई उनसे मुलाकात तो दीवाना दिल यही सवाल कर बैठा, क्या यूं ही हमें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके छोड़ोगे?

0: दीवाने की दीवानगी में कहीं हम खो न जाएं छाए गीत के इस सफर में क्या आप हुए ये सवाल एक जवाब के इंतजार में यही छोड़ जाते हैं स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का नमस्कार शुभ रात्रि
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम, मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

उपकार संधु दगाया गीत से यही प्रोग्राम दी पहली पेशकत से प्रोग्राम नू अगे वधा रहे हां ते सुनवा रहे हां तुहानू पव तारिया दे संगीत विच सजिया गीत आवाज वतन संधु दी

गीत ने निभाया लखविंदर वडाली ने जीती दी तर से। श्रोतो एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो। प्रोग्राम है सुरसांझ, वारी हरजीत हरमन दी, संगीतकार ने अतुल शर्मा।

0: संगीत से प्रीत हुंडल दा गीत च गायकी अमर सजाल पुरिया दी सी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोते हुन चुनिया सी तुहाडे लई मेहताब विरक दा गीत देसी रूट्स ने धुन तैयार कीती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी

0: तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तों अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।